नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को

उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1,500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। कल नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में सामना ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
2: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी।
0: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र

0: नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज करती है। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब के सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: जालिम लोशन दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: समझ के सिर्फ बचाएंगे नहीं,
1: पैसा बढ़ाएंगे हम।
2: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
3: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
4: क्या हो गया ऐसा?
3: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
4: ये कमाल कैसे हो गया?
3: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
4: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
3: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
6: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
7: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
6: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखता है।

0: नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
0: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहाँ अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री की रिपोर्ट।
2: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4 करोड़ 77 लाख से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106 करोड़ 64 लाख वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भशु और न्यायाधीश के एस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स की राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर एक दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में साफिक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
6: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, गृह मंत्रालय की समिति की

0: सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, 3 नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 3रा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सऊदी से उड़ाने बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका, 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नव भारत टाइम्स की खबर है, पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर, जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत, 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट 6 गवर्नर्स, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर मूव टू तमिलनाडु एंड ओपी माथुर टू केरलम। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली टुडे। Election Commission launches nationwide outreach drive to ensure no eligible voter is left out of electoral rolls. 4 Lashkar-e-Taiba terrorists killed in landmine blast at LOC in Poonch district of Jammu and Kashmir. India's internet subscriber base crosses 111 crores. And in badminton, Denmark Open 2026 to begin today in Odense. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has appointed governors for 6 states. Mr. O.P. Mathur, who is currently serving as the governor of Sikkim, will be the new governor of Keralam. He will replace the current governor of Keralam, Rajendra Vishwanath Arlekar, who has been appointed as the governor of Tamil Nadu. Mr. Dushyant Gautam has been appointed as the new governor of Sikkim. Besides, the president has appointed Mr. Braj Mohan Ram as the governor of Orissa, Dr. Sudha Yadav as the governor of Karnataka, and Dr. Dhal Singh Bisen as the governor of Uttarakhand. Their appointments will take effect from the dates on which they assume charge of their respective offices. India will host first ever BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah will chair the high-level meeting. The meeting underscores the shared resolve to combat terrorism, transnational organized crime, narcotics, radicalization, trafficking, illicit financial flows, and cyber threats. We have a report.
3: Extending a warm welcome to all the participating home ministers and member state delegations, Union Home Minister Amit Shah said that the historic meeting underscores the shared resolve of the BIMSTEC members to strengthen cooperation in tackling common security challenges, including terrorism and organized crime. In a social media post, Mr. Shah said that through decisive coordination, the members will remain committed to building a safer, stronger and more secure BIMSTEC region. The Way of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, BIMSTEC, is a regional grouping comprising Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. It aims to promote economic and technical cooperation among countries bordering the Bay of Bengal and its neighborhood. Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
2: In Jammu and Kashmir, 4 terrorists, including a top Lashkar-e-Taiba LET commander, were killed in a landmine blast along the line of control when they were trying to infiltrate into Poonch district yesterday. The deceased terrorists have been identified as top LET commander Mohammad Faizan, Mohammad Ishtiaq, Mohammad Vakas and Mohammad Asim. All of them were residents of Mandala Madarpur in Hajira Tehsil.

0: तनिष्का सांघवी और साथियों की आवाज में हिंदी मीडियम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, कुमार के बोल, सचिन जिगर का संगीत। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिनपॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और हम बात कर रहे हैं खुद की कमी खामी और निकालने की जो बुरी आदत होती है, खुद की बुराई करने की आदत होती है, ये क्यों होती है एक इंसान में? उसे लगता है कि अपने अंदर हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन लगातार अगर हम अपने साथ ऐसा करते हैं, लगातार खुद की बुराई करते रहते हैं, खुद में मीन मेक निकालते रहते हैं, तो हम अपनी कोई मदद नहीं कर रहे होते, हम अपने अंदर सुधार नहीं कर रहे होते, बल्कि खुद को हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दे रहे होते हैं और खुद को हम दबा रहे होते हैं, तो इससे हमारा व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो अगर जब भी हमारे मन में, क्योंकि एक आदत है तो इतनी जल्दी तो ये आदत जा नहीं सकती, अगर हम कहें कि आज के बाद से हम अपनी बुराई नहीं करेंगे तो ये आदत भी जा नहीं सकती तुरंत। तो जब भी अपने मन में कोई ऐसी बात आए कि भाई देखो ये मैं तो अच्छे नहीं दिख रहा हूँ, या देखो मेरी तो यही आदत है, या तो मैं हमेशा गलती कर देता हूँ, मैं हमेशा देर से आता हूँ, इस तरह की जो बुरी बातें हम अपने बारे में बोलते रहते हैं, कमी निकालते रहते हैं, तो ऐसा कोई भी विचार जब हमारे मन में आए तो उसे बस नहीं बोलेंगे, मत सोचिए, क्योंकि आपने सोच तो लिया है तो असर तो आप पर होने ही वाला है। तो उन कमियों को दूर करने का कोई तरीका तो होगा आपकी नजर में, कि अगर देर से जाता हूं तो आप सोचेंगे कि नहीं आज मुझे जल्दी जाना है, तो इस तरह का कोई जो एक तरीका हो, कोई जिससे उन कमियों को दूर कर सकते हैं, वो आप खुद को बताएं। तो अगर आप ये खुद के बारे में बोलने लगेंगे तो इससे आप खुद को नेगेटिविटी नहीं देंगे बल्कि सकारात्मक विचार देंगे और बदलाव भी इसी तरह से सकारात्मक होगा। और एक काम आप कर सकते हैं कि रोजाना आईने के सामने खड़े होकर के कम से कम अपने बारे में 3 अच्छी बातें तो बोलिए ही, यानी कि अपनी तारीफ

अमिताभ भट्टाचार्य के बोल आप सुन रहे थे प्रीतम के संगीत के साथ रफ्तार और साथियों की आवाजें दंगल फिल्म के इस गीत में। और अगर आपके मन में भी दंगल मचा हुआ है कि आप अपनी क्या तारीफ करेंगे और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी तारीफ में आप क्या कहेंगे, तो कोई बात नहीं, ये गाना आपके लिए।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे ओके जानू फिल्म का ये गीत, गुलजार के बोल, ए आर रहमान का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और आप अपनी तारीफ कीजिए, तब तक हम आते हैं एक अंतराल लेकर।

0: विशाल ददलानी की आवाज में शेफ फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। अंकुर तिवारी ने इसे लिखा, रघु दीक्षित का संगीत।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

हृदय गट्टानी और की आवाज में आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत बैंजो फिल्म के इस गीत में। और जैसे कि हमने बात की कि हम अपनी खुद की बुराइयां ना करें, अपनी तारीफ करें और जो कमियां हमें खुद में दिखती हैं उन्हें स्वीकार कीजिए, देखिए, लेकिन जहां वाकई कमी हो उसे ही मानिए और स्वीकार कीजिए। और सिर्फ मानने और स्वीकार करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे बदलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि खुद को अगर हम बदल ही नहीं रहे, सिर्फ कमियां निकाल रहे हैं, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। तो रोज खुद को एक एक कदम आगे बढ़ाइए, सकारात्मकता की सीढ़ी पर चढ़ाइए और खुद को प्रेरित कीजिए आगे बढ़ने के लिए, और ये करते हुए आपका मन भी खुशी से झूम उठेगा।

खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। दिन भर जहाँ भी रहिए, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। आज के इस कार्यक्रम से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के कटेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें पत्थरों में और ठेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

नमस्कार श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।

0: लाया हूँ।
1: सन 1929 के अगस्त महीने की 4 तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण संस्था।

प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। यह फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलील दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

किशोर दा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं: मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9 2 11 और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया ये।

0: मेरे महबूब।
1: किशोर दा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया, फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोरदा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में राजेश खन्ना।

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम हैं, दूर गगन की छाव में, दूर कराही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हरफन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: हाँ, किसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया, तो संवरिया।

0: नगरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
2: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोर दा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।
3: जिंदगी का सफर।

किशोर दा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोर दा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोर दा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

व्यक्त करता हूं। हर साल ये फोरम दुनिया के बेहतरीन माइंड्स को एक साथ लाता है। यहां इकोनॉमी पर चर्चा होती है, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और ग्लोबल अफेयर्स पर विमर्श होता है। और इस बार पहली बार यह आयोजन भारत में हो रहा है। मैं मिस्टर ब्लूमबर्ग और उनकी पूरी टीम को इस निर्णय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने सही समय पर सही जगह चुना है। फ्रेंड, इस साल ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक फोरम की थीम दुनिया में उभरती नई पावर्स पर केंद्रित है। हर युग में पावर के अपने स्रोत रहे हैं, अपनी परिभाषा रही है, लेकिन 21वीं सदी में, खासकर तीसरे दशक में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। टुडे टेक्नोलॉजी इज पावर, डेटा इज पावर, नॉलेज इज पावर, इनोवेशन इज पावर। लेकिन साथियों, असली सवाल यह नहीं है कि पावर किसके पास है, बल्कि सवाल यह है कि इसका यूज कैसे हो रहा है। क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बनाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है, और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहां जिस विजन के साथ आया हूं वो है पावर टू एम्पावर। साथियों, ये विचार भारत के लिए नया नहीं है। हमारे यहां कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका भाव यही है कि ज्ञान, धन और शक्ति जिसके पास भी हो वो इनको यूज कैसे करता है, ये महत्वपूर्ण है। यानी पावर का असली मूल्य उसके पर्पज में है, और इसी सोच को आज के दौर में समझना बहुत जरूरी है। साथियों, पावर टू एम्पावर करने वाला जो ये मानवीय भाव है, ये सिर्फ दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी परंपरा ने हमें सिखाया है, और भारत

हमने इसे अपनी गवर्नेंस में, अपनी कार्य संस्कृति में लागू करके दिखाया है। इसलिए मैं भारत के उदाहरणों से ही अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। साथियों, आप सभी जानते हैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के इस दौर में भारत में 500 मिलियन से अधिक यूट्यूब यूजर्स हैं, 500 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। हमारे यहां अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर। साथियों, 12-13 साल पहले तक भारत में एक समय वो भी था जब मोबाइल और इंटरनेट तक पहुंच भी अपने आप में एक शक्ति हुआ करती थी। जिसके पास एक्सेस था उसके पास इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, अपॉर्चुनिटीज थी। 2014 के बाद जब भारत में नई सरकार बनी, हमें सेवा करने का अवसर मिला, तो भारत ने मोबाइल डेटा को एफोर्डेबल बनाने पर जोर दिया। इसी का नतीजा है कि आज एक छोटे शहर का विद्यार्थी भी डिजिटल लर्निंग से जुड़ सकता है, किसी गांव में छोटा दुकानदार भी नए कस्टमर्स तक पहुंच सकता है, एक युवा भी ऑनलाइन नए कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। यानी भारत में कनेक्टिविटी ने सिर्फ लोगों को कनेक्ट नहीं किया, उसने अपॉर्चुनिटीज को भी कनेक्ट किया है। यही पावर टू एम्पावर है। साथियों, आप में से जो अतिथि विदेश से आए हैं उन्हें मैं कहूंगा कि आप भारत के डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को भी आजमा कर देखिए। हमारे यहां एक स्ट्रीट वेंडर और एक बड़े कार शोरूम का कारोबार अलग अलग है, उनका स्केल अलग है, लेकिन भारत में ये दोनों डिजिटल पेमेंट्स के एक ही इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी की ताकत है। साथियों, भारत का जो भी सामर्थ्य है उसे हम अपने घर में ही रखने के समर्थक नहीं है, उसे हम ग्लोबल साउथ के साथ, अन्य पार्टनर कंट्रीज के साथ निरंतर साझा करते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुभव को हम दूसरे देशों से शेयर कर रहे हैं ताकि वे अपनी जरूरतों के अनुसार अपने डिजिटल सिस्टम्स विकसित कर सके। हमने कोविड के समय भी कोविन प्लेटफॉर्म बनाया था जो ओपन सोर्स था। यानी हमारे ये निरंतर प्रयास है कि भारत की कैपेबिलिटी दूसरे देश के लिए भी पॉसिबिलिटीज के नए दरवाजे खोले। यानी हमारा सामर्थ्य मानवता को एम्पावर करें। साथियों, इनोवेशन की पावर

एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, यह अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।

कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है। वर्ष 2014 से पहले भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते थे, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई है। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं। नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, नए सॉल्यूशंस बन रहे हैं। साथियों, पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास ऑथोरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। साथियों, आपने जेम ट्रिनिटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में भी सुना होगा। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट तक सरकारी मदद सीधे पहुंचाने की व्यवस्था बनाई है। इससे करप्शन कम हुआ है, देश के नागरिक की सुविधा बढ़ी है, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच सीधा रास्ता बना है। साथियों, पावर टू एम्पावर की यही सोच भारत की ग्लोबल एंगेजमेंट में भी दिखाई देती है। कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का बहुत बड़ा महत्व था। तब सवाल था कि क्या इस ताकत का फायदा भी कुछ ही देशों तक सीमित रह जाएगा, या फिर जिनके पास ये सुविधा और ये सामर्थ्य नहीं है उन देशों उन लोगों तक भी वैक्सीन पहुंचेगी। भारत ने मानवता को एम्पावर करने वाला रास्ता चुना। हमने 100 से अधिक देशों को वैक्सीन की सप्लाई की। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी दूसरे देशों के लिए भी सहायता का माध्यम बनी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा। कुछ महीने पहले भारत में एआई इंपैक्ट समिट हुई और श्रीमान ब्लूमबर्ग जी ने भी उस एआई समिट की अभी बहुत तारीफ भी की है। इसमें हमने ह्यूमैनिटी के लिए एआई के उपयोग के साथ ही एनिमल्स को कैसे एआई का फायदा हो, इससे भी चर्चा का विषय बनाया। नंदन यहां बैठे हैं, आपको बाद में काफी जानकारी वो दे सकते हैं ये कैसे किया। यानी भारत जितना सक्षम होगा मानवता के लिए, दुनिया के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, पावर इज नॉट जस्ट एबिलिटी टू मूव अहेड, इट इज ऑल्सो द एबिलिटी टू एम्पावर अदर्स टू मूव अहेड। भारत का मानना है कंपटीशन जरूरी है, लेकिन कंपेशन भी होना चाहिए। इनोवेशन जरूरी है, लेकिन उसके

विस्तार भी होना चाहिए। नेशनल स्ट्रेंथ जरूरी है, लेकिन ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो, या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे। साथियों, मैं आप सभी को एक और उदाहरण देता हूं। पेरिस एग्रीमेंट के तहत क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भारत ने एक बड़ा कमिटमेंट किया था। साल 2015 में हमने लक्ष्य रखा था कि 2030 तक अपने इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 40% नॉन फॉसिल सोर्सेज से हासिल करेंगे और भारत ने यह उपलब्धि नवंबर 2021 में ही हासिल कर ली। यानी तय समय से 9 साल पहले भारत ऐसा करने वाला पहला G20 देश बना। यह केवल एक कमिटमेंट पूरा करने की बात नहीं थी, यह भारत की बदलती हुई एनर्जी जर्नी का भी संकेत था। साथियों, 2014 में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करीब 75 गीगावाट थी, आज ये करीब 300 गीगावाट हो चुकी है। यानी हमने लगभग 4 टाइम ज्यादा कैपेसिटी ऐड की है। साथियों, भारत में हो रहे इस एनर्जी ट्रांजिशन के नए अवसर भी बन रहे हैं। आज हमारे यहां पीएम सूर्यगर और पीएम कुसुम जैसी स्कीम्स चल रही है। एक योजना घरों को सोलर पावर से जोड़ रही है, दूसरी योजना किसानों को सोलर एनर्जी पैदा करने और उसके यूज से इनपुट कॉस्ट कम करने का सामर्थ्य दे रही है। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से भारत को 30 गीगावाट से अधिक सोलर कैपेसिटी हासिल हुई है। इनसे हर साल करीब 30 मिलियन टन से अधिक कार्बन एमिशन कम होने का अनुमान है। यानी सोलर पावर प्रकृति की रक्षा करने का माध्यम भी बन रहा है और लोगों को एम्पावर भी कर रहा है। साथियों, दुनिया में पावर की इस भागदौड़ में भारत एक अलग मिजाज लेकर चल रहा है और उसका गवाह ये दशक भी है। साथियों, 21st सेंचुरी का ये टिकट अभूतपूर्व ग्लोबल चैलेंजेस लेकर आया है। हम अगर पिछले 6 वर्षों को देखें, हमने ग्लोबल पैंडेमिक देखी, फिर अलग अलग रीजन्स में युद्ध छिड़ गए, जैसे इतना ही काफी नहीं था, फिर ट्रेड हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो या एनर्जी सप्लाई हो, उसमें भी अड़चने आ रही है। दुनिया एक संकट से बाहर निकलने का रास्ता तलाशती है, तब तक एक नया संकट सामने आ जाता है। जिन चीजों ने कभी दुनिया को जोड़ा था, वही आज वेपन बन रहे हैं। सप्लाई चेन्स हो, एनर्जी हो, मिनरल्स हो, पेमेंट्स हो या टेक्नोलॉजी, ये दबाव और दबदबे का माध्यम बन रहे हैं। बीते दशकों में ग्लोबलाइजेशन ने जो रूट्स बनाए, वो कम और

चौक पॉइंट्स बन गए, ये हम सब देख रहे हैं। इन सब के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में काम करने के तरीके बदल रही है। अनेक देशों में एजिंग से जुड़े चैलेंजेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल ट्रस्ट का है, भरोसे का है। भरोसा ये कि जरूरत के समय सप्लाई जारी रहेगी, भरोसा ये कि जो प्रॉमिस किए हैं वो निभाए भी जाएंगे, भरोसा ये कि संकट के समय हमारा पार्टनर कंट्री साथ खड़ा रहेगा। और यहीं पर भारत एक अलग मिजाज, एक अलग सोच के साथ आपके सामने है। साथियों, 21st सेंचुरी में भारत की प्रगति सबके साथ मिलकर, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कहानी है। जब दुनिया को एफोर्डेबल मेडिसिन की जरूरत होती है तो हर 5 में से एक जेनरिक मेडिसिन भारत से आती है। जब डिजिटल आइडेंटिटी और पेमेंट के सॉल्यूशन चाहिए तो भारत में विकसित मॉडल दिखता है। जब दुनिया को टैलेंट की जरूरत होती है तो भारत के स्किल युवाओं पर भरोसा होता है। आज भारत में 2000 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं जो दुनिया भर की कंपनीज को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। साथियों, ये स्पष्ट है कि जब भी दुनिया को एक स्टेडी पिलर की जरूरत होती है तो भारत अपना दायित्व समझते हुए हाथ आगे बढ़ाता है। वी डू नॉट ग्रो एट एनी वन्स कॉस्ट, वी ग्रो विद द वर्ल्ड एंड फॉर द वर्ल्ड। और साथियों, भारत जो करता है उसका क्रेडिट भी नहीं चाहता। दुनिया गर्व से कहती है कि भारत ने दुनिया को जीरो दिया। इस जीरो ने पूरी मानवता का लाभ किया, लेकिन भारत ने इसके लिए कभी भी रॉयल्टी नहीं मांगी है। और आज भी भारत इसी भावना के साथ काम करता है। और आज की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे जो विचार हैं उनमें भी वो सारी बातें दिखती है। इतिहास में अनेक वैश्विक संगठन बने हैं, उनके अपने अपने हित रहे हैं, लेकिन भारत ने इस तरह के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स बनाए। आप भी गौर कीजिए, हमने कैसी कैसी संस्थाओं को जन्म दिया और दुनिया में क्या क्या हुआ है उसका जरा एक बार तुलना करके देख लेना। हमने क्या दिया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हमने क्या दिया? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने क्या दिया? बिग कैट अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। यानी जिनसे सबका भला हो, हर जीवन का भला हो, ऐसे इनिशिएटिव भारत ने लिए हैं। साथियों, भारत किन विचारों को लेकर सामने आया है ये भी आपके सामने है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विजन, वन अर्थ

0: वन फैमिली वन फ्यूचर, यह हमारी सोच। वन अर्थ वन हेल्थ, यह हमारी दूरदृष्टि। यानी भारत जोड़ने पर और जुड़ने पर बल देता है, और इसमें भी पावर का इस्तेमाल दूसरों को एम्पावर करने के लिए ही है। साथियों, अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में भारत रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का विश्वास देता है। इस साल अप्रैल जून क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है, और यह ग्रोथ मजबूत नींव पर खड़ी है। 12-13 साल पहले भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4% से भी अधिक था। पिछले साल यह घटकर लगभग 0.5% यानी 0.61% रह गया है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 700 बिलियन डॉलर से अधिक है। हमारा बैंकिंग सिस्टम अनेक देशों में सबसे मजबूत स्थिति में है। साथियों, इसी मजबूती का परिणाम है कि भारत की सॉवरेन रेटिंग्स अपग्रेड की जा रही है। आज भारत का कॉन्फिडेंस अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। हमें क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन के साथ रिफॉर्म कर रहे हैं। जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। हमने इंसॉल्वेंसी लॉ बनाया है। 29 लेबर कोड्स अब 4 सिंपल कोड में सिमट चुके हैं। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, और हम यहां रुके नहीं हैं। भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। हमारे लिए रिफॉर्म्स कोई कंपल्सन नहीं है, रिफॉर्म्स हमारा कन्विक्शन है। साथियों, हजारों वर्ष पहले हमारे वेदों ने हमें एक मंत्र दिया था, संगच्छत्वम संवदत्वम संभो मनासि जानताम। आइए आज फिर उस मंत्र को दोहराएं। लेट अस वॉक टुगेदर, लेट अस स्पीक टुगेदर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन अनदर। क्योंकि साथ चलने से हमारी शक्ति बढ़ती है, संवाद से हमारी समझ बढ़ती है, और एक दूसरे को समझने से हम मिलकर बड़ी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। यही है पावर टू एम्पावर। अपनी पावर को केवल अपनी प्रगति तक सीमित न रखना, बल्कि उसे दूसरों के लिए भी नए अवसर बनाए। मुझे विश्वास है कि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक फोरम का यही मंच इसी भावना को आगे बढ़ना का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। एक बार फिर आप सभी पार्टिसिपेंट्स को इस कार्यक्रम के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
1: अभी आप नई दिल्ली में आयोजित 8वीं ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

हनुमान जी के सीने में तुमको सियापति राम मिलेंगे, सीना चीर के देखो मेरा तुमको हनुमान मिलेंगे।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार करें नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, आज का दिन हिंदी सिनेमा की दो अनमोल शख्सियतों की याद दिलाता है। आज अशोक कुमार जी की जयंती है, जिन्होंने अपने सहज अभिनय से भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। वहीं किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि हमें उनकी आवाज के उस जादू की याद दिलाती है जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इन्हीं यादों के साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो कभी पटरियों पर दौड़ता है तो कभी जिंदगी के रास्तों पर चलता है। साथियों, इबारत आपने फेसबुक पर पढ़ ही ली होगी और हमारे सभी श्रोता साथी फेसबुक पर हमसे कमेंट्स द्वारा जुड़ भी गए होंगे। यदि कोई छूट गया है तो आइए उनके लिए एक बार इबारत फिर पढ़ देते हैं। कहते हैं जिंदगी भी एक रेलगाड़ी के सफर जैसी है, जहाँ कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ रास्ते में मिलते हैं और कुछ किसी स्टेशन पर उतर जाते हैं। कभी सफर सुहाना होता है तो कभी मुश्किलों की सुरंगें सामने आती हैं। लेकिन जैसे हर सुरंग के बाद रोशनी आती है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद उम्मीद की किरण जरूर आती है। हम अक्सर मंजिल की चिंता में सफर का आनंद लेना भूल जाते हैं। याद रखिए, हर मुसाफिर की मंजिल अलग हो सकती है, लेकिन सफर में मिली यादें हमेशा साथ रहती हैं। इसलिए जिंदगी की इस रेलगाड़ी में मंजिल तक पहुंचने की जल्दी मत कीजिए। सफर को भी मुस्कुराकर जीना सीखिए, क्योंकि खूबसूरत यादें अक्सर रास्तों में ही बनती हैं। और आइए इसी के साथ सुनते हैं ये इस कार्यक्रम का आज का पहला गीत, अशोक कुमार की आवाज में। आशीर्वाद फिल्म से ये गीत है, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत।
1: आओ बच्चों खेल दिखाए, छुक छुक करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी।

आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर, सब पैसेंजर या

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक लोहे की सड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुलपक डंडी टीले पे झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल पट्टम दमली पट्टम दमली पट्टम मतलब पट्टम ओंगोल नदी गोल नदी गोल ओंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद सोतनूर पोतनूर सोतनूर

तो आप सभी ने इस गीत में आया हुआ वो शब्द तो पहचान ही लिया होगा। जी हाँ, वो शब्द है रेलगाड़ी। अशोक कुमार का गाया ये गीत था। एक साथी ने लिखा है, आज ट्रेन के सफर की बात है तो जिंदगी हमेशा सफर पर ही रहती है। कभी सुरीला सफर बन जाती है, कभी खट्टा तो कभी मीठा। आज मैं ट्रेन से नहीं गाड़ी से सफर कर रही हूँ, इसलिए आज प्रोग्राम नहीं सुन पाऊंगी। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जिस सफर पर हैं वहां पर हमारा जो विविध भारती है न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप दिन रात लगातार कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, तो आप वहां पर सुन सकती हैं। तो कार्यक्रम को मिस मत कीजिए, इसका आनंद लीजिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। शब्द पहचानिएगा, आपको कमेंट करके बताना है कि इस गीत का वो शब्द कौन सा है। कालिया फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, राहुल देव बर्मन का संगीत।

तो आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है। आज अभी ये जो गीत बजा, इसका शब्द था साथ। एक साथी ने लिखा है, फिल्म आशीर्वाद का प्रसिद्ध गाना रेलगाड़ी भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक और अनोखा गीत है, जिसे दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार यानी कि दादा मुनि ने गाया था। इसे भारतीय सिनेमा का पहला रैप गाना माना जाता है, जिसमें बिना किसी भारी संगीत के रेलवे स्टेशनों के नामों और ग्रामीण भारत की छटा को बेहद लयबद्ध अंदाज में पिरोया गया है। इस मासूम और ऊर्जावान गीत को हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने लिखा और वसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी ने लिखा है, किशोरदा आप भी तो जिंदगी के इस सफर के ऐसे मुसाफिर हैं जो अपनी देह से भले ही दूर चले गए, मगर अपनी आवाज के रूप में हर दिल में ठहर गए। वक्त की रेलगाड़ी आगे बढ़ती रही, पीढ़ियां बदलती रहीं, कितने ही स्टेशन पीछे छूट गए, लेकिन आपके गीतों का कारवा आज भी उसी शिद्दत से हमारे साथ चल रहा है। आपकी आवाज सुनकर लगता है जैसे कोई बिछड़ा हुआ अपना फिर लौट आया हो, जैसे यादों की किसी पुराने स्टेशन पर जिंदगी कुछ पल के लिए ठहर गई हो। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत और पहचानिएगा इस गीत का वो कौन सा शब्द है जो हमारी आज की इबारत में शामिल है। फिल्म का नाम है राम बलराम। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है। बोल है आनंद बख्शी के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना, इससे पहले जो गीत बजा उसमें शब्द था रास्ता। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक साथ ही लिखते हैं, सफर बैलगाड़ी का हो या हवाई जहाज का या जिंदगी का, हिचकोले तो लगते ही हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं। इसलिए सुहाने सफर का आनंद भी ले तो जीवन के झटके भी हंसते हंसते ले। एक साथ ही लिखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी खूबसूरत सफर पर होते हैं तो ऐसी ऐसी मीठी मधुर और मधुर अनुभूति होती है जिन्हें हम कभी भी भूलना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि सफर कभी खत्म ही ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब सफर पर हमें बहुत अच्छे बातूनी लोग मिल जाते हैं या फिर हम जैसी सोच रखते हैं उस तरह की सोच रखने वाले लोग मिल जाते हैं तो बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर सफर कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। लगता है ये सफर थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला गीत आपको सुनवाते हैं शोले फिल्म से। इस गीत को

पहचाना आप सभी ने शब्द था स्टेशन, जो इस गीत में शामिल था और हमारी इबारत में भी। एक साथी ने लिखा है, यादगार सफर का आनंद लिया जब ट्रेन गुजर रही थी सुरंग से, वो भी सबसे लंबी, करीब 14 किलोमीटर लंबाई से गुजरना हुआ। अगस्त 2026 में जब वंदे भारत ट्रेन में श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से श्रीनगर स्टेशन की ओर वापसी में मेरी धर्मपत्नी और मैंने सफर किया था। बाबा अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के दर्शन लिए रास्ते में चेनाब नदी के ऊपर सबसे ऊंची ब्रिज से भी ट्रेन गुजर रही थी। कई सुरंगों और ब्रिजेस से ट्रेन गुजर रही थी जिनको देखकर हम भी आनंदित हो रहे थे। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं श्रोताओं, जो हमारी जहन में बस जाती हैं, हमें

याद हो जाता है पल पल कि कैसे गुजरा था और कितना खूबसूरत था। चलिए इस कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

शब्द बिल्कुल सही पहचाना है, ये शब्द था किरण। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का सफर एक खूबसूरत नदी की तरह है जो कई मोड़ों और उतार चढ़ावों से होकर गुजरती है। इस रास्ते में कई लोग लहरों की तरह मिलते हैं और कुछ यादें बनकर पीछे छूट जाते हैं। कभी मुश्किलें चट्टान बनकर सामने आती हैं, तो कभी खुशियों के झरने सुकून देते हैं। हम अक्सर किनारे यानी कि मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में बहते पानी के आनंद को भूल जाते हैं। मंजिल तो तय है, लेकिन असली सुकून हर पल को मुस्कुराकर जीने और इस सफर में यादें बटोरने में है। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है परिचय, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: मुसाफिर शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है।
1: वो बताएंगे फिल्म के शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम कोरोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनके जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और एक साथी ने लिखा है, एक बार रेल से सफर के दौरान हमारे कोच में आग लग गई थी। बाहर से लोग चिल्ला रहे थे कि गेट खोलो। मेरे मामा जी जो मुझे लिवाने आए थे बोले सब अंदर आना चाहते हैं, चुपचाप सो जाओ। इतने में मुझे खिड़की के पास आग की लपटें दिखाई दी। मैंने दौड़ कर गेट खोल दिया, सब सुरक्षित बच गए, पर आज भी याद है, आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, ये बात सुनकर तो हमें भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। लेकिन आपकी सूझबूझ ने उस घटना को टाल दिया कह सकते हैं, तो ये सूझबूझ कभी कभार बहुत जरूरी होती है। एक साथी ने लिखा है, मुझे तो रेलगाड़ी की यात्रा इतनी अच्छी लगती है कि मैं हवाई यात्रा को छोड़कर रेलगाड़ी की यात्रा करना पसंद करती हूँ। मेरे ऑफिस से मुझे बीकानेर से मुंबई तक का हवाई यात्रा का अवसर मिलता है, लेकिन मैं रेलगाड़ी से ही जाती हूँ, तो सब मेरे कलीग्स और मेरे परिवार वाले मेरी हंसी भी उड़ाते हैं कि हवाई यात्रा छोड़कर आप रेलगाड़ी में जाती हैं। रेलगाड़ी से खिड़की से झांक कर एक एक स्टेशन देखना, धरती से धरती तक का मिलन, धरती से आकाश का क्षितिज पर मिलन, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक साथी ने लिखा है, मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन से जब भोपाल की तरफ चलते हैं तो ट्रेन बहुत सारी सुरंगों और हरे भरे जंगलों के बीच से गुजरती है। वो जंगल की छटा बरसात के समय बहुत ही रोमांचक होती है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज, साथ दिया है मोहम्मद रफी ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। पहचानिए शब्द।

याद शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना। एक साथ ही लिख रहे हैं, जिंदगी का सफर बहुत खूबसूरत है। इसमें कभी खुशी मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है। कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी मुश्किलें हमारा हौसला परखती हैं। लेकिन यही उतार चढ़ाव जिंदगी को जीने का सही मतलब सिखाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का ये सफर वाकई बहुत ही अजीब है। बंद मुट्ठी आए थे, खुले हाथ जाना है। जो धन मान सम्मान कमाया वो छोड़कर एक दिन चले जाना है। न साथ लाए थे न साथ आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए हमें जीवन में हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए। हमें हमेशा ये लगना चाहिए कि हमें जो मिला है वो काफी है। यानी कि जितना मिला जैसा मिला वो अच्छा है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है।

ही लिख रहे हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बस सुरीला सफर का भी थोड़ा सा सफर बाकी है, मगर हम सोच रहे हैं काश सुरीला सफर का सफर और बढ़ जाए। गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो दोस्तों, रेलगाड़ी की तरह जिंदगी का सफर भी चलता रहता है। कुछ यादें और कुछ लोग हमेशा साथ रह जाते हैं। आज किशोर दा और दादा मुनि को याद करते हुए इसी खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। अब दीजिए आज्ञा नेहा अगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से।

0: और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना हो, क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के, कृपया इसे फिर से सुन ले, भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता

0: संरक्षण और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
1: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैनजोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। ये मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारेल हावलेचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
3: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्स पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है।

गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए एक दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्थन किया है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड

0: अपने आसाम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
1: असम में नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई
0: है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश टोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से ओडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आपने ट्यून किया है अपना सबसे पसंदीदा चैनल, मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम हाउस नंबर 44। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है और सचिन देव बर्मन का संगीत।
4: बंसिया बजाई श्यामा सुध बिस राई तरे

0: कूल क्या है यार।
1: तेरे रे तेरे रे तेरे रे रे रे
2: ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा? हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा।

0: गाड़िया दुनिया की गाड़िया चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। दुनिया की गाड़िया चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा,
2: ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में।

0: दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। हाँ, दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। क्यों भाई, मैंने ठीक कहा?
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
0: ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा,

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म उड़न खटोला से, आवाज लता मंगेशकर की थी। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में नई दिल्ली फिल्म का ये गीत। शैलेंद्र की रचना है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री 420। इस फिल्म का गीत आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश की। शैलेंद्र ने इस गीत को रचा है और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: ही बोले रे
1: मेरा हो जाता जिला फिर बेड़ा पारू
2: मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारों।
3: सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं एक झलक। मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म का गीत गीता दत्त और साथियों की आवाज। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं संगीत ओपी नैयर का।

0: लगे जज। आता विविध भारती प्रसारण सेवेचे कार्यक्रम आम्ही मुंबई केंद्राहून पुन्हा सहक्षेपित करीत आहोत, कृपया प्रतीक्षा करावा।
1: आज अंकिता गावा कई महिलाओं को प्रेरणा दे रही हैं और अब सुनवाते हैं एक गाना।

0: संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर। फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक,
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेंद्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और ये संदेश हमने सुनवाए अपने अपने श्रोताओं को, और हमने अपने श्रोताओं से कहा था कि गरबा और दांडिया का स्वरूप बदल रहा, तो उसमें अपने उद्गार लिखे, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गरबा डांडिया के बदलते रूप में इतना ही कहना है कि घर मोहल्ले के चौराहे से पारंपरिक भक्ति अनुष्ठान से निकलकर अब कमर्शियल ग्लोबल रूप ले चुका है, जिसमें भक्ति भाव कम है और टिकट रेट ज्यादा होता है।
4: बिल्कुल सही बात लिखी है, क्योंकि जब हम जाते हैं देखने तो वहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे उसके टिकट के बढ़ा दिए गए, और साथ साथ वेशभूषाओं पर भी बहुत सारा खर्चा होता है। देखा जाए बाजार में भरे पड़े हैं सामान और लोग खरीद भी रहे हैं, ऐसा नहीं, तो खर्चा भी बहुत तेजी
3: और
4: से होता है।
3: दोस्ती भी यहाँ पर बहुत परवान चढ़ती है, खास तौर से उसमें कई बार गलत रिश्ते भी पनप जाते हैं।
4: बिल्कुल,
3: लड़के लड़कियों के बीच, कम उम्र के लड़के कम उम्र की लड़कियों को, जहाँ पर बहुत ज्यादा गलत सही का फर्क नहीं पता होता है, उनके बीच एक रिश्ता एक नाता तय होता है, तो वो रात भर गरबा के बहाने निकल के बाहर जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, वो भी ठीक नहीं है।
4: बिल्कुल,
3: तो
4: क्योंकि उससे वो गलत ही प्रभाव पड़ता है, बाद में पता चलता है कि दोस्ती हुई और बाद में दोस्ती में दरारें आ रही हैं, तो ये सब चीजें बहुत हो रही हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि पहले के जमाने में गरबा गांव के मैदान में एक ही जगह सब मिलकर करते थे, अब तो हर जगह होने लगा है। पहले कम आवाज होता था, अब बड़े बड़े स्पीकर आ गए और शांति सुकून तो गायब ही हो गए। पहले चनिया चोले और केडियो ड्रेस थे, अब वो ड्रेस तो है पर साथ में अंग प्रदर्शन भी होने लगा है। कुल मिला के पहले जो भक्ति भाव था वो अब मतलब कहना चाहिए अच्छा नहीं लगता है, ऐसी चीजें पहनने में दिखावे में हो गई हैं। और मेरी बात करूं तो पहले मैं भी गरबा करने जाता था, पर अब सिर्फ देखता हूं, गरबा करने का मन नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि आज के फैशन के दौर में इतनी चीजें निकल आई हैं, डिजाइनर चीजें आ गई हैं, कपड़े आ गए, तो लड़कियां उसकी तरफ भागी जा रही हैं।
3: पूरा बाजार भरा होता है।
4: बिल्कुल,
3: इस समय बाजार में जाए तो वही चानिया चोली और घाघरा मिलता है, और जैसे होड़ सी मची हुई है कि हम उससे ज्यादा अच्छा पहन ले।
4: बिल्कुल,
3: और रंगों के हिसाब से जो कपड़े पहने जाते हैं उसमें लोगों को और दिक्कतें आती है कि वो एक दिन पहना गया और फिर अगले गरबा में ही काम आता है, तब तक पता चला कि आप शहर छोड़ चुके होते हैं, आपका करियर बन चुका है, वगैरह वगैरह।
4: और बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी भी मिल रही है जो सिल्वर कोटेड होती है, नकली ज्वेलरी जो है, लेकिन उसको पहनने से कई बार इन्फेक्शन का भी हो जाता है, लेकिन फैशन है, पहनना है तो सब पहनते हैं।
3: इसका जो उद्देश्य है मौज मस्ती
4: जी
3: और एक दूसरे से मेल मुलाकात, एक दूसरे से स्नेह प्रेम का रिश्ता वो बना रहे, बस ये उद्देश्य होना चाहिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि होली और दिवाली के अलावा जो पर्व सिनेमाई संगीत में सबसे अव्वल नंबर पर है वो है गरबा। हालांकि मैंने आज तक गरबा नहीं खेला, मगर अपने आसपास के माहौल को देखती हूँ तो लगता है कि गरबा के

0: साथ जिंदगी की रंगत कुछ और ही हो गई है। गरबा बस गीतों के सहारे धूम धड़ाका ही रह गया है। जीवन में आने वाले खुशी के छोटे छोटे पल को उत्सव में बदल देने की यह परंपरा बहुत पुरानी है। यह हमें ऐसी दुनिया में खो जाने का मौका देता है जहाँ खुशियां होती हैं और अपनों के साथ। गरबा नृत्य में हावी होता रिमिक्स कल्चर जीवन शैली में बदलाव की वजह से महज शोर और दिखावा ज्यादा है। अब तो उसमें बाकायदा भांगड़ा पॉप सब कुछ
1: सब चीज मिक्स हो गया है बिल्कुल,
0: और बहुत तेज संगीत। अब तो जो प्रतिबंध है कि आपको रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद कर देना है, लोग उसका भी उल्लंघन करते हैं, तो नियमों का उल्लंघन कम से कम ना करें
1: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, गरबा और डांडिया का ये बदलता स्वरूप ये साबित करता है कि हमारी संस्कृति आधुनिक समय के साथ खुद को ढालने में सक्षम है। हालांकि आधुनिकता की चकाचौंध में हमें अपनी मूल परंपराओं और जड़ों को नहीं भूलना चाहिए ताकि इस पवित्र उत्सव की असल आत्मा हमेशा जीवित रहे। बिल्कुल सही बात लिखी है, हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हम सुनते हैं एक गीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोरोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: सखी जहरी कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। मंजरी जी कहाँ गुम हो गई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर ढूंढ रही टिप्पणियां। एक अच्छी खबर सुनिए, वो ये कि एक महिला को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है। वो महिला है नवनीतम नवी पिल्ले। ये भारतीय मूल की दक्षिणी अफ्रीकी जज और यूएन मानवाधिकार की प्रमुख रही है। इन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। मतलब मिला क्या, चुना गया है भी, और वो तो बाकायदा घोषित हुआ है और जब ये सम्मानित किया जाएगा आगे चलकर
1: जी। और उन्होंने युद्ध अपराध और नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाने के लिए आवाज उठाई, प्रयास किया। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने की ओर प्रयास किया, इसके लिए आप सम्मानित की गई।
0: और इसके इनके बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी दे दें। 1890 के दशक में नवी के ग्रैंड पेरेंट्स बंधुआ मजदूर के रूप में गन्ने के खेतों में काम किया करते थे। मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की थी। दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1941 को डरबन में इनका जन्म हुआ। और पिता बस चलाते थे, यानी बस के ड्राइवर थे। उनका बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा
1: जी। और वे दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला जज बनी। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से डॉक्टर ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस की डिग्री प्राप्त करी। वे रवांडा के लिए बने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ICTR की अध्यक्ष रही। इसके बाद वे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की जज भी रही।
0: और इन्होंने 2008 से 2014 तक UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के रूप में कार्य किया। और इनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें हम विविध भारती परिवार की ओर से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। अब क्या इरादा है,
1: गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: मंजरी जी, फिर याद है कि माँ की अलमारी में कुछ अधूरे सपने भी छुपे होंगे, कभी टटोलने की, ढूंढने की कोशिश की आपने?
1: बिल्कुल बहुत की, क्योंकि अक्सर
0: कि
1: जब
0: सिर्फ वो अंगूठी और जेवर लेके पहनने की कोशिश
1: नहीं,
0: की।
1: मेरा तो जब वो खोल के, माँ जब बक्सा खोल के बैठती थी तो बस उनकी जो शादी का जो लहंगे की ओढ़नी थी तो वो बस हम बच्चे निकाल लिया करते थे, तो उसको मैं साड़ी की तरह लपेट के घूंघट काढ़ के डोलती थी
0: और माँ की साड़ी
1: कमरे
0: पहनने का भी एक अलग सुख
1: में।
0: होता
1: बिल्कुल
0: था।
1: बिल्कुल,
0: कद छोटे होने के कारण माँ की साड़ी आती नहीं थी, तो उसको दोहरा करके
1: दोहरा करके
0: या फिर
1: साड़ी
0: खुद लपेट के साड़ी
1: पहनते
0: पहननी
1: थे
0: नहीं आती थी, तो लपेट के आईने के सामने देखना और
1: जी।
0: अलग अलग रूप रंग में जैसे जैसे माँ तैयार
1: बिल्कुल,
0: होती थी
1: और
0: वैसे
1: माँ
0: वैसे
1: की
0: तैयार
1: माथे की
0: होना।
1: बिंदी निकाल के अपनी लगा लेना, ये भी बड़ा शौक होता था
0: तो लेकिन
1: जी
0: उनके सपनों के बारे में, तब जब हम छोटे
1: जी
0: थे तो माँ के सपनों के बारे में सोचने के लिए हम वहां पहुंच भी नहीं सकते थे कि
1: नहीं
0: उनके
1: नहीं
0: भीतर, उनके मन
1: बिल्कुल
0: में क्या चल रहा होता है, वो सबके बारे में, पूरे परिवार के बारे में सोचती थी,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता। ये हर घर की कहानी है।
1: ये अब जाके हम लोग सोच पाते कि उस समय उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी थी अपने चीजों को बताने, समेटने के लिए। तो
0: बिल्कुल, और वहां माँ की अलमारी खोलते हैं, वहां जो उनकी जिंदगी की बहुत सारी यादें, उनके बहुत सारे अधूरे किस्से छिपे होते थे, वहां कपड़े और पुराने साड़ियों की तह में उनकी खुशबू बसी होती थी, और उनकी जिंदगी के बहुत सारे अधूरे किस्से भी छिपे होते थे जो गाहे बगाहे वो बताया भी करती थी, अपने बचपन
1: बिल्कुल
0: की यादें कि क्या हुआ था उनके बचपन में, उनके लिए कोई स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने खुद पढ़ाई की, ऐसी तमाम बातें माँ
1: बिल्कुल
0: के, हम सबके माँ के, और लगभग सबकी माएं एक जैसी होती थी उस समय।
1: बिल्कुल, क्योंकि वो सारी यादें जुड़ जाती हैं। और उन समय उनके गोटे वाली साड़ी जब हम लोग देखते थे तो माँ, मतलब माँ का यही होता था कि भाई ये शादी में बनवाई थी, पापा से लड़ाई लड़ करके कितना खर्चा किया था इस पर पापा बोले थे, और अक्सर माँ ये किस्सा बताया करती थी। और अच्छे कपड़ों की वो अलमारी अलग से रखती थी जिससे वो खास मौके पर पहनने का सपना देखा करती थी। तो इस तरह की यादें होती हैं कि, और किसी भी पुराने डिब्बे में बचा कर रखी हुई चिट्ठियां, तस्वीरें या छोटी छोटी चीजें, वो माँ उसको दिखाकर अपनी चीजें बताया करती थी कि उन्हें क्या अच्छा लगता है।
0: अब देखिए ना, हमारे श्रोता भी इन यादों में बिल्कुल खो गए हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद कि माँ अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुनती थी और बुनकर वो अक्सर उपहार में दे देती थी। अंतिम समय में उनकी सलाइयों पर वर्धमान के पिंक कलर की ऊन का एक स्वेटर था, उसे अधूरे स्वेटर को मैंने करीब 10 साल तक संभाल के रखा। अंततः मेरा मन हुआ कि मैं इसको पूरा करूं और मैंने उस ऊन का इस्तेमाल करके खूब सुंदर सी जैकेट बनाई। और तो हमें एक बात याद है कि जब स्वेटर की बात की है तो ऊन का गोला बनाने के लिए बैठा करती थी माँ और घर की जो अन्य सदस्य होते थे सबको, और हमें, हम सबको ऊन का गोला बनाने के लिए थमा दिया जाता था कि
1: जी
0: आप भी बनाओ, और वो ऊन पूरा उसका एक गुम्फा बन जाता था,
1: हाँ,
0: संभलता नहीं था।
1: और कई बार तो
0: और
1: फिसल जाए, अगर गोला
0: बिल्कुल
1: बना भी रहे छोटे छोटे
0: हाँ, तो
1: हाथों से
0: कहाँ दूर
1: फिसल
0: तक,
1: गया तो
0: दूर तक
1: दूर
0: चला
1: तक
0: गया
1: चला गया,
0: वो धागा,
1: फिर वो
0: धागे के पीछे पीछे
1: फिर
0: भागता
1: मालूम पड़ा,
0: रहा।
1: उलझा भी देते थे, गांठ पड़ गई, फिर माँ कह रही तुम
0: हाँ,
1: रहने दो, तो लेकिन
0: और उस
1: बड़ा
0: गोले
1: मजा
0: में
1: आता था।
0: एक खास तरह की कलाकारी भी होती थी उसमें, तरह तरह के, जैसे एक सुपारी का आकार
1: हाँ
0: या फिर संतरे का आकार,
1: नहीं,
0: सेब
1: उसको
0: का आकार बनता
1: अंगूठे
0: था।
1: और छंगुनिया में ऐसे करके तिकल्ला नहीं होता है जैसे, उस तरह से वो लपेटा जाता था, तो वो भी छोटे छोटे हाथों में कितना लपटेगा, तो वो भी
0: अब
1: बड़ा
0: हमारे
1: मजेदार
0: श्रोता
1: है
0: देख नहीं सकते, नहीं
1: जी।
0: तो हम ये जो अभी आपने
1: अब क्या
0: एक्टिंग करके
1: एक्शन
0: दिखाई है ना, ये
1: किया
0: दिखा सकते थे कि मंजरी जी बाकायदा वो हाथ
1: हिला
0: ऐसे हिला के
1: करके
0: दिखा रही हैं।
1: मैं, श्रोता बहुत समझदार।

0: सब जान गए कि तिकल्ला बोला है तो वो समझ गए होंगे। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी में सिर्फ साड़ियां ही नहीं, उसके उनके अधूरे सपने भी तह करके रखे होते थे, जो उन्होंने शायद विवाह के पहले खुद के लिए संजोए हों। एक तह में वो लाल जोड़ा जो उसने उन्होंने अपनी विवाह के बाद कभी खुलकर पहना ही नहीं, दूसरी तह में वो किताब जिसे वो पढ़ना चाहती थी पर चूल्हे चौके की जिम्मेदारियों में वक्त नहीं मिला, और सबसे नीचे दबी वो डिबिया जिसमें मेले से लाई बिंदिया आज भी वैसी की वैसी पड़ी है। उनके अपने सारे रंग हमारे भविष्य को संवारने में घोल दिए और खुद एक फीकी सी साड़ी में सिमट गई। अलमारी खोलो तो आज भी उसमें से ममता के साथ साथ एक अनकही उदासी की महक आती है कि काश किसी दिन हमने पूछा तो होता, माँ तुम्हारा सपना क्या था। बहुत ही मतलब दिल भर आया ऐसी बातों को सुन करके।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि पुराने जमाने की माँ के लिए अलमारी यानी सिर्फ कपड़ों की या गहनों की राशि, वो तो है उनके त्याग की निशानी और अधूरे सपनों की कहानी, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। सामाजिक वैचारिक अनास्था के कारण खुद की इच्छाएं दबाकर कुटुंब के लिए वो त्याग की मूर्त बन जाती थी, परंतु उन्हीं के ममता भरी सजग छाया में पली आज की आधुनिक माताएं ऐसी नहीं है। बड़ी समझदारी से परिवार और बच्चों को संजोते हुए वे खुद के सपने और कर्तव्य पूरी करती नजर आ रही है। दरअसल इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अगर हम उन परंपराओं से आगे नहीं बढ़ेंगे तो वे पीछे रह जाएंगे। आपको अगर आगे बढ़ना है और लड़कियों को खासतौर से आगे बढ़ाना है, उन्हें भी समानता से उनके हक के बारे में सोचना है, तो फिर उन परंपराओं से तो आगे निकलना होगा।
0: बिल्कुल,
1: अब कहने का ये मतलब नहीं है कि माँ की जो अच्छाइयां थी उसको आप हटा के दूर रख दीजिए।
0: जी, उनको तो रखना ही अपने पास। और हमारे साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी सिर्फ कपड़ों या कागजों का बक्सा नहीं होती थी, वो उनसे उन अनकहे अधूरी इच्छाओं का संग्रहालय होती थी जिन्हें उसने परिवार की खुशियों के पीछे कहीं छुपा दिया होता है। उसके ये अधूरे सपने किसी मलाल की तरह नहीं होती बल्कि उस त्याग की मिसाल होते हैं जो उसने हंसते हंसते खुद पर ओढ़ लिया। उसने अपनी दुनिया को अपने बच्चों और परिवार की खुशियों के इर्द गिर्द बुन लिया और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को उन परतों में हमेशा के लिए छुपा दिया। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उनकी और घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच ना जाने कितनी बार अपने सपनों को वो चुपचाप तह करके रख दिया करती हैं, और बच्चों की खुशी, पति की जरूरतें और घर की जिम्मेदारियां उनके अपने अरमानों से आगे निकलती रहती हैं। और उनकी अलमारी की हर तह जैसे कहती कि मैंने भी कभी अपने लिए कुछ सोचा था। और कभी अगर ममता जी उस अलमारी को ध्यान से खोलिएगा तो देखिए माँ के कितने सपने उसमें मिल जाएंगे, और जिसमें उनके कोई कभी शब्द नहीं उन्होंने दिए, और अगर मिल जाए तो उसे पूरा करने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि माँ के सपनों को उम्र नहीं बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए होता है। और कई बार होता है कि जब उनकी अलमारी देखो तो उसमें बहुत सारे रुमाल दिख जाते हैं तह रख के, उनकी कढ़ाई के धागे दिख जाएंगे, सुई का डब्बा दिख जाएगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें माँ की उस अलमारी में दिख जाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उनके उसके साथ साथ कुछ कागजों के बीच रसीद भी मिल जाती है, जो चीज़ें उन्होंने उस समय खरीदी होंगी वो भी दबी पड़ी हैं, कुछ पन्ने फट गए उनके रसीदों के, लेकिन फिर भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और इसके साथ साथ अपने बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े, झबले, टोपी, मोजा, ये सब भी उनकी अलमारी में खूब दिख जाता है। और जब क्या कहते हैं कि उनकी तस्वीर का जो एक पोटली होती है या एल्बम होता है, उसमें भी ना जाने कितने समय के लोगों के परिवार के सदस्यों की फोटोग्राफ्स मिलती हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कितना संभाल के उन्होंने उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को रखा हुआ है।
1: और वो प्रिंट करने का जमाना भी था कि प्रिंट करवा के सहेज के रखा भी जाता था, कहीं एल्बम में लगाया जाता था या लिफाफे में करके। अब एक गाना सुन लेते हैं और बातें करते हैं।

0: भाई, माँ की अलमारी में जो छुपे उनके अधूरे सपने थे, इसी तरह चांद सितारों के माध्यम से, सूरज के माध्यम से, कुदरत के माध्यम
1: बिल्कुल
0: से पूरे होते थे। वो
1: बिल्कुल
0: अपने सपनों को इन्हीं तरीके से, कभी चांद की कहानी, कभी कोई कहानी सुनाकर अपने सपने पूरे कर लेते थे। सपन कहानियों के माध्यम से उनके सपने मुकम्मल हो जाया
1: बिल्कुल।
0: करते
1: और
0: थे।
1: ममता जी, कई घरों में उनके पास अलमारियां होती थी, माँ की दीवार वाली अलमारी होती थी, कई बार वैसी लकड़ी की पुरानी जो नक्काशीदार अलमारियां होती थी, और कई बार उनके बक्से या कोठरी में बहुत सारी चीजें होती थी, इस तरह से भी
0: अब
1: रखते थे वो लोग।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि माँ की अलमारी में पुराने फोटो, डायरी, कॉपी और बहुत सारी यादगार चीजें रखी हुई थी। उन कॉपियों में

0: उन्हें कुकिंग टिप्स फिल्मों के मनपसंद गाने लिखे हुए होते
1: क्या
0: थे।
1: बात।
0: और एक हमारी सखी, इन्होंने लिखा है कि बहुत सुंदर बातचीत चल रही है, वो जो अंगूठे और उंगली में लपेटने की बात कर रही मंजरी जी, ऐसे लपेटा हमने लोगों को, हम लोगों के भाई पतंग उड़ाने के समय जब मांझा लपेटा करते थे। भाई ये तो हमने भी ये काम किया है
1: मांझा लपेटना भी
0: कि
1: तिकल्ला
0: हाँ
1: जैसा बनाते
0: वो
1: थे
0: पतंग उड़ा रहे हैं
1: जी।
0: और मांझा पकड़ो आप
1: हाँ
0: संभालो, और उंगली कट जाती थी।
1: हाँ जैसे वो जब पूरा लपेट के निकलता था ना ममता जी, तो उसका शेप जो गुल्ली डंडा खेलते थे ना, वो जो गुल्ली होती थी वैसा बन जाता था। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मेरे माता जी ने एक बार अलमारी में एक पोटली निकाली थी। हम तीनों भाई बहन उसको बड़े अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा। उस पोटली में पुराने सिक्के थे और हमारे जन्म से पहले के, और बहुत रेयर अलभ्य थे कुछ सिक्के और कुछ तांबे के, कोई हॉल वाले तो कोई पुराने गोल, मतलब एक गोल छेद वाला सिक्का, और पुराने गोल नहीं होते थे, और राजा महाराजा के मुख्य उसमें छापे बने हुए थे। वे सिक्के उनके नहीं, हमारे सपने पूरा करने के लिए रखे होंगे, मतलब वो
0: और
1: सिक्के देख के।
0: एक
1: जी
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी सेंट बनाया करते थे, मेरी मम्मी की बड़ी बड़ी लोहे के संदूक में से आज भी उनकी खाली छोटी छोटी शीशियों से उनकी खुशबू संदूक में से आती है, जब भी वो संदूक खोले जाते हैं, जबकि वो सेंट नाना जी ने आज से कम 70-75 सालों पहले बनाए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे माता जी ने एक बार अलमारी में से कोई एक पोटली निकाली थी, हम तीनों भाई बहन इसे अचरज से देखने लगे कि इसमें क्या होगा। उस पोटली में पुराने सिक्के थे, और जो आपने बताया
1: जी
0: कि सिक्के, तो इस तरह की बातें। और एक श्रोता ने लिखा है कि उन दिनों की माँ की अलमारी कहाँ हुआ करती थी भाई, हमने तो माँ की काठ की पेटी या फिर बक्सा देखा था, जिसे वही छू सकता था जो बच्चा उनके समीप रहते हुए उनका प्रिय होता था, और मैं उन बच्चों में नहीं आ पाया था। और बिल्कुल ताला बंद होता था उस बक्से में, और चाबी कहीं
1: मतलब
0: छुपा
1: इसीलिए
0: के
1: तो मैंने
0: रखी
1: बोला
0: होती
1: ना
0: थी।
1: कि सब चीजें सबके यहाँ नहीं होती थी।
0: हाँ, एक श्रोता लिख रहे हैं कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद है, माँ के अंतिम दिनों में खूब स्वेटर बुना करती थी, और
1: जी
0: हम स्वेटर की बातें कर चुके हैं।
1: बिल्कुल। और जब वो स्वेटर बिनती थी तो हमने देखा ही था कि किस तरह से वो बिना करते थे। और माँ की बहुत सारी चीजें भी होती थी घर गृहस्थी की, जिन्हें हम सोच सकते हैं कि वो भी कभी कभी उसमें चीजें दिख जाती थी उनके बक्से में रखी हुई संभाल करके।
0: अब हम मुहावरों की बातें कर लेते हैं
1: जी
0: मंजरी जी, तो बताइए आपको कितने मुहावरे याद हैं? आज जो मुहावरा हमने दिया है वो याद है कि नहीं?
1: हाँ
0: बताइए।
1: अपना उल्लू सीधा करना। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे को इस बात से बताना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ स्थलों में, अन्य पूजा स्थलों में, जहाँ श्रद्धालुओं में भक्ति भावना होनी चाहिए, अत्यंत भीड़ भाड़ में भी कुछ लोग बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भी धक्का देते हुए पहले पहले दर्शन करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, जो कि भक्ति भावना के विपरीत है। और इस तरह की बातें हमारे बहुत साथियों ने लिख करके भेजी हैं, तो हम
0: अच्छा मंजरी जी,
1: जी
0: आप तो मुहावरों की बातें बता रही हैं और शुरुआत तो हम कर चुके हैं, लेकिन अभी ये माँ की अलमारी की बात तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, उसमें
1: नहीं
0: से कपड़े सपने निकलते ही आ रहे हैं। अब हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है, अभी अभी कमेंट लिखा है, हमें लगता है कि
1: जी
0: इस विषय पर बातें करना हमारी सखियों को बहुत मन भाया है। लिखा है कि अलमारी में उनकी साड़ियां इतने करीने से मलमल के कपड़े में लपेटी हुई रखी रहती हैं, जैसे कितनी अनमोल धरोहर है उनकी। साड़ियों में तो उनको बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है। एक किनारे में उनकी छोटी सी पैकेट बना रहता है, छोटा सा पैकेट बना रहता है, जिसमें उनकी पुरानी तस्वीर, पुराने एल्बम और न जाने क्या क्या सहेजा हुआ रखा रहता है। काफी सारी डायरी जो उनको लिखने का शौक है, कुछ कुछ लिखती रहती हैं, वो भी उनकी अलमारी में सजी रहती है। पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, सब कुछ एक पेंसिल बॉक्स में करके रखा हुआ है। कभी उनको पेंसिल चाहिए तो वो भी वर्क पहले भरने के लिए,
1: जी
0: और कभी गलत हुआ तो रबर भी चाहिए, शार्पनर भी चाहिए, वो सब संभाल के अपने पास रखती हैं। क्या बात है भाई, हमें लगता है कि जो माँ की अलमारी की यादें हैं वो अंतहीन है। अब
1: बिल्कुल
0: एक हमारी सखी ने लिखा है कि मम्मी की अलमारी और यादें शब्द नहीं है बयां करने के लिए, अब तो हमारे पास भी जैसे शब्द खत्म होने को है। और डायरी और कॉपी, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि उनके अलमारी में, उनके बक्से में एक डायरी होती थी, और कुछ डायरी में ये भी लिखा होता था कि किसको कितना दिया
1: हाँ,
0: गया
1: खर्चे का हिसाब।
0: दहेज और
1: जी
0: खर्च का हिसाब,
1: हाँ
0: और तोहफे के रूप में, जैसे शादी विवाह में
1: जी
0: शगुन के तौर पर देते हैं, तो फलाने को इतना रुपया दिया गया और उनको इतना रुपया दिया जाना है, ये
1: जाना
0: भी लिखा
1: है
0: होता
1: बिल्कुल।
0: था। बिल्कुल
1: और साथ
0: इतिहास
1: में
0: होता
1: किसी
0: था।
1: मेले में जाती थी तो वो भी डायरी में दिखता था कि

0: आप ये पानी के बताशे, दही बड़ा, चटनी और आलू की टिक्की खाई और इतने पैसे ले गए थे, इतने पैसे बचे, मतलब ये सब चीजें छोटी छोटी भी वो लिख के रखती थी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम उनकी यादों को साझा करते हैं, ताजा करते हैं।
1: अक्सर मुहावरों और लोकोक्तियों में बात करती थी, है ना?
0: बिल्कुल। जैसे कुछ काम करने का मन नहीं है या नहीं कर पा रहे, तो बस कुछ ना कुछ अपना बोल दिया उन्होंने, अपनी मुहावरे कहा थे।
1: तो और आज का विषय भी मुहावरा है जी। तो मुहावरे में हमने रखा है कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपने आप अपना काम निकाल के आगे बढ़ जाएं। और हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये पुराना और प्रसिद्ध मुहावरा है, इसका अर्थ है अपना काम सिद्ध कर लेना। और ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जिंदगी में जो अपना काम सीधा करके आगे निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया अपना उल्लू सीधा करना, भाई इस नेक कार्य में तो प्रायः सभी लोग लगे हुए हैं, ऐसा करते रहना कोई बुरी बात नहीं, बशर्ते उससे किसी का दिल ना दुखे, लिखते हैं हमारे साथी। और एक लिखते हैं कि इस मुहावरे को इस बात से बताना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि तीर्थ, अच्छा ये चीज तो मैंने पढ़ी है कि दर्शन करने जाते हैं, ये वाली बात। और एक लिखते हैं कि उल्लू सीधा करने वाले मुहावरे पर ये गीत फिट बैठता है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अपना काम निकल गया, फायदा हो गया, फिर कौन तू कौन मैं, सावधान ऐसे लोगों से जो दूसरों को उल्लू बनाते हैं। कई बार हो भी जाता है तो बड़ा मन दुखता है कि कैसी लोगों की प्रवृत्ति होती जा रही है, जो सिर्फ मतलब के लिए ही साथ में खड़े होते हैं, उनका मतलब निकल गया तो आपको पूछेंगे भी नहीं, पलट कर आपको देखेंगे भी नहीं। मुसीबत के समय तो आप ये उम्मीद ही मत करिए कि वो आपका साथ देंगे। तो अगर आप एक बार धोखा खा जाएं तो हमेशा के लिए उसको अपना बना लें, कि इस तरह
1: पर ऐसा करना नहीं चाहिए कि अपना मतलब सिद्ध करके आगे बढ़ के और सामने वाले की मदद ना करें। और मंजरी जी, आज आपदा जोखिम नवीनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आज के दिन को याद किया जाता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक करना, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा और भूस्खलन जैसी आपदाएं बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन आपदाओं को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन सावधानी और तैयारी से नुकसान कम किया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसके सतर्कता की ओर ध्यान दिलाना इसका उद्देश्य है।
0: बिल्कुल। और हमें घर, स्कूल और कार्यालयों में सुरक्षा के उपायों को जानकारी देनी चाहिए, रखनी भी चाहिए। और आपातकालीन जो नंबर होते हैं उनको लिखकर जरूर आप रखिए, कभी भी मुसीबत पड़े तो आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। सरकार और आम लोगों को मिलकर आपदा से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। जागरूकता और सही तैयारी से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस दिवस का संदेश है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और आपदा के लिए पहले से तैयार रहें।
1: और अब सुनते हैं ये गाना।

0: अभिमान फिल्म का ये गाना था और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोली बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार, नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने। ये है दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित है एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई में अपने एक्टिंग के सपने को जिया है और आज एक बहुत ही पसंद की जाने वाली सीरीज पंचायत, जिसका नाम है, उसके किरदार विकास के रूप में करोड़ों दिलों में जगह बनाई है। एक ऐसा किरदार जो ईमानदार है और जिसमें कहीं ना कहीं मासूमियत भरी है और उसने लोगों को हंसाया भी है और रुलाया भी है। अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम बनाने वाले अभिनेता चंदन रॉय जी से आज हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच मैम, और मुझे सच में यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा, आप बात करते हैं उस सीरीज की जहाँ से आपको नाम मिला विकास का, इस किरदार का, तो ये पंचायत के साथ जुड़ना कैसे हुआ? क्योंकि शायद दिलचस्प बात ये है कि आप बहुत ज्यादा सीरियसली इसका ऑडिशन नहीं दिया था या यूं ही हो गया, कुछ तो मजेदार किस्सा है इसके साथ जुड़ा हुआ। पंचायत के साथ कैसे जुड़े आप?
2: देखिए, जब मुंबई में ऑडिशन का सिलसिला शुरू हुआ मेरा, तो जैसा मैंने कहा कि रोज सुबह कई बार तो बहुत लंबे टाइम तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि मैं मुंबई आ गया हूँ। सोया हुआ हूँ, नींद खुली, मैंने कहा अरे मैं मुंबई में हूँ, यकीन ही नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि बचपन से मुझे मुंबई जाना था, बचपन से ही सपना देखा था मैंने। इस कदर दीवानगी थी मुंबई आने का कि अगर मैं किसी ट्रेन में देख लूं कि पटना टू बांद्रा, मुझे लगता था कि जाकर के उस बॉगी को एक बार प्रणाम कर लें।
1: अच्छा।
2: उसको छू लें, क्योंकि ये मुंबई जा रहा है। और जब मैं मुंबई आ गया तो रात में कभी चौंक के उठ जाता था कि सच में मैं मुंबई आ गया, मैं मुंबई में हूं अभी, ये यकीन नहीं होता था मुझे। और जब मुझे ये लगता कि जब तुम मुंबई आ गए हो तो तुम सोए हुए क्यों हो भाई, उठो ना, जाओ ना ऑडिशन देने के लिए,

0: जो तुम चाहते हो। तो बहुत ही सुबह उठ के थोड़ा गले के लिए कुछ रियाज कर लेता था, चूंकि थिएटर बैकग्राउंड से आया था मैं,
1: बिल्कुल
0: और वही चावल दाल, कभी चना मूंग खा के, या सत्तू। सत्तू मेरा बहुत ही गो टू फूड है, अभी भी यकीन माने मैं सत्तू पी के आया
1: अच्छा
0: हूँ
1: जी
0: तो उस टाइम में भी ये सब सत्तू या चावल दाल खा के मैं निकल जाता था ऑडिशन के लिए।
1: जी
0: और कई बार मुंबई की तो आप जानते ही हैं उमस, इधर तो आप गर्मी भी ज़्यादा होने लगी है, बट ये सब चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता था। ना तो उस समय सनस्क्रीन था, ना तो कुछ था, बस जुनून था जिसकी वजह से पूरा शरीर चमक रहा था, है ना।
1: बिल्कुल आपकी बातों में झलक रहा है वो
0: हाँ जी,
1: जुनून
0: और मैं निकलता जहां मुझे मिल जाए पानी पीने का, पसीने सुखाने का, वो सब चीज मैं कर लेता था। ऑडिशन जब भी मैं कहीं जाऊं, और दिन में अगर एक भी ऑडिशन हो जाए, तो ऐसा लगता था आज का दिन सफल हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि जब सामने कैमरा होता था तो मुझे लगता मैं क्या कर दूं। कई बार स्क्रिप्ट हम घर से अपना कुछ मोनोलॉग तैयार करके ले जाते थे,
1: जी
0: और सामने में रिकॉर्ड करने वाला अगर उसको मजा आ रहा है तो हम उसी में इम्प्रोवाइज करने लगते थे,
1: बिल्कुल
0: किसी तरह इसको मैं इंप्रेस कर दूं अपने एक्ट से। ये फितूर, ये दीवानगी, ये पागलपन मेरे सर पे सवार हो गया था, और ये चलता रहा मैं। बट उस समय एक चीज मेरे ध्यान में था कि ऑडिशन दो और भूल जाओ। क्यों? क्योंकि यहां लोड बढ़ जाता था दिमाग पे कि भाई मैंने बड़ा अच्छा ऑडिशन दिया, कॉल नहीं आया, पता नहीं क्या होगा, तो अपन ऑडिशन दे दे के भूल जाते थे।
1: तो पंचायत का ऑडिशन भी आपने दे के भूल गए या किस तरह से यहां तक पहुंचे
0: पंचायत
1: आप?
0: का ऑडिशन में ये हुआ कि तब तक 1.5 साल हो चुके थे मुंबई में,
1: अच्छा
0: साल 1.5 साल, और मेरे कुछ दोस्त, मेरे नहीं मतलब मेरे रूममेट के एक दोस्त, वो उनकी महफिल जमती थी मेरे घर पे, तो अंकित मैं फ्लैटमेट हुआ करता था। फ्लैटमेट क्या, हम लोग समझिए कि रैन बसेरा ही था वो, एक साथ 6-7-8 लोग रह रहे हैं,
1: अच्छा
0: और कमाल की बात ये थी कि 7-8 लोगों के लिए मैं ही रोटी बेलता था।
1: अच्छा रोटी का काम आपको सौंपा गया था
0: नहीं, सौंपा क्या गया था, कोई कुछ करते ही नहीं
1: अच्छा
0: थे और मुझे ये था कि इस समय पे मुझे बाहर जाना है, ऑडिशन देना है, समय पे
1: जी
0: सो जाना है, तो वो सब इंतजार करते रहते थे कि चंदन आएगा तो खाने को मिलेगा तो उन सब के लिए मैं रोटी बनाता, और बाद में फिर मैं टिक्कर बनाने लगा।
1: अच्छा
0: टिक्कर जो रोटी का बहुत मोटा रूप
1: अच्छा छोटा और मोटा रूप, छोटा और मोटा रूप।
0: हाँ जी,
1: अच्छा
0: बहुत मोटा मोटा मैं, चूंकि मुझे
1: हाँ
0: बड़ा मुश्किल हो गया था वो,
1: जी
0: मतलब 1-1 घंटे तक रोटी बेलना, तो मैं
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: मोटा
1: जी
0: मोटा बनाने लगा।
1: जी
0: खैर, तो हाँ महफिल जमती और फिर लोग आते हैं, तो उसमें से एक मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त बन गया लतिन, तो उन्होंने कहा कि यार चंदन तुम कल आ जाओ ऑफिस में, तुम्हारा हम इंट्रोडक्शन करवा देंगे। मैंने कहा अरे वाह, बहुत सही, इतने साल से आज तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है कास्टिंग वे में। तो उसने बुलाया, अगले दिन हम पहुंच गए वहां। कमाल की बात ये थी कि पंचायत सारे कैरेक्टर लॉक हो चुके थे, सिर्फ दो कैरेक्टर बचा हुआ था, एक एक दिन का वो काम था, एक इलेक्ट्रिशियन का और एक दूल्हे का। बोला देख दूल्हा तो तू लग नहीं रहा, इलेक्ट्रिशियन बन जा, उसका ऑडिशन है। उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, बोला ये करके तैयार, थोड़ा सा तैयारी कर लो और आ जाओ।
1: जी
0: मैंने कहा ठीक है, एक दो बार पढ़ा और फिर मैंने वो ऑडिशन देखे, फिर वही बातें भूल जाओ। भूल गया फिर अपने दूसरे ऑडिशन की तैयारी घूम घूम के, कि यस ऐसे दरवाजा नॉक करता था कि भाई सर कुछ है क्या मेरे लिए, कुछ है क्या मेरे लिए, ये फिर शुरू हो गया मेरा। उस समय चंदन चंदन कुमार जो हमारे पंचायत के राइटर है, और दीपक मिश्रा जो हमारे पंचायत के डायरेक्टर है, तो इन्होंने देखा मेरा ऑडिशन, और उन्होंने उसी समय डिसाइड किया कि यार इस लड़के से अपन कुछ और करवाते हैं, बहुत सही लग रहा है। तब तक विकास के लिए कोई और कैरेक्टर लॉक हो चुका था,
1: अच्छा
0: तो उनके मन में आया क्यों ना हम विकास एक बार ट्राई करें इससे। तो आया विकास का ऑडिशन मेरे पास, मुझे लगा कि यार ये क्या ही, मतलब कहाँ मैं वन डे टू डे करता हूँ, इन्होंने पैरेलल लीड कैरेक्टर मुझे ऑफर कर
1: बिल्कुल
0: रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, मतलब हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपना तो चल ही रहा है, रोज भटकेंगे फिर से। और मैं एकदम कफन बांध के आया था अगले 20-25-30 सालों के लिए, ये नहीं कि मुझे फट से काम, नहीं बहुत समय बुढ़ापा तक वो सोच के आया था मैं। बट आ गया पंचायत का ऑडिशन, और अगले दिन चला गया ऑडिशन के लिए, दिया
1: शुरू किया
0: ऑडिशन।
1: जाए
0: हाँ दिया ऑडिशन, और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया TVF से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो रामनगर में उनका ऑफिस आ गया मैं मिलने के लिए। यकीन मानिए मुझे उस समय तक मैं TVF जानता भी नहीं था, कुछ वीडियो मैंने जरूर देखे थे बट जानता नहीं था मैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ

0: कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है।
1: क्या बात है,
0: तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: क्या बात है, क्या बात है। इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिलना ही बहुत बड़ी बात है।
0: हाँ जी।
1: इसी बात पर कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
0: अरे वाह, मैं इस वक्त जो मुझे याद आ रहा है, जब मैं स्कूल शुरू किया था ना, तो अक्सर फिल्म का एक गाना बहुत उसमें, आजकल तो वायरल कहते हैं, उस समय तो लोकप्रिय कहा करते थे।
1: पॉपुलर,
0: हाँ जी, हाँ
1: बहुत
0: जी।
1: पॉपुलर।
0: तो एक बार आजा आजा अक्सर फिल्म का गाना है,
1: जी,
0: इमरान हाशमी
1: सुनवाते
0: उनका
1: हैं गीत,
0: दौर था ये।
1: सुनवाते हैं गीत,
0: हाँ जी, हाँ
1: बिल्कुल।
0: जी।

0: पंचायत की बात चलिए तो हम आते हैं कि आपके किरदार पर, उस किरदार के लिए कुछ तैयारी की आपने, जैसे मैनरिज्म कुछ है उसके, उसकी बोली किस तरह से बोलेगा, इसके पीछे कुछ तैयारी हुई, वर्कशॉप हुई, किस तरह से ये क्योंकि बहुत पसंद किया जाने वाला किरदार है, जिस
1: बिल्कुल
0: हिसाब से वो स्लो, बड़े आराम से, इत्मीनान से बोलता है, चलता है, तो वो तैयारी कैसी हुई?
1: जी। तो जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो जैसा वो थिएटर में मुझे बताया गया था कि जितने बार स्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तो वो कैरेक्टर एक समय के बाद खुद से बोलने लगेगा कि मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो पंचायत का जो विकास है वो स्क्रिप्ट से मैंने उठाया, मतलब उसको जितना मैं पढ़ा, मैंने बहुत पढ़ा मैंने, कि अगर ये प्रधान जी से इस तरह से बात कर रहा है, ये पहलाद चा से ऐसी बातें कर रहा, या सचिव से ऐसी बातें कर रहा, तो ये किस तरह का कैरेक्टर होगा, इसके अंदर कैसी एनर्जी होगी, ये सब कुछ आप जब बार बार बार बार स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, आपको सब कुछ मिल जाता है। इस एक स्क्रिप्ट में अगर आप बार बार पढ़ो तो उसमें सब कुछ रहता है, आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं होती,
0: बस उसमें रमना और बसना होता है
1: बस।
0: स्क्रिप्ट में।
1: तो समझिए कि विकास को इतना, मैं चूंकि वो पहला प्रोजेक्ट था
0: जी
1: तो मैं किसी तरह से कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहता था,
0: जी
1: तो उसको बहुत पढ़ा मैंने। जैसे कई बार होता है ना कि जो बुक आपका बहुत पसंदीदा होता है, आप इतना पढ़ जाते हो कि उसके पेज थोड़े से मटमैले हो जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: हर जगह फिंगरप्रिंट होता है, गंदे से
0: बिल्कुल
1: हो जाते हैं हर जगह। तो मेरा स्क्रिप्ट भी इसी तरह से हो गया था,
0: जी
1: कहीं भी मुझे अगर 5-10 मिनट का भी समय मिलता मैं एक दो पेज पढ़ लेता,
0: अच्छा
1: इतनी दीवानगी थी मुझे अपने स्क्रिप्ट को लेकर के। तो एक तो दिमाग में ये भी था मैम कि अपन एक्टिंग नहीं करेंगे कहीं भी, जितना अच्छा ये मेरा ना मतलब अभिनय को लेकर के मेरा अप्रोच भी हमेशा से रहा है
0: जी
1: कि लोगों को ये ना लगे कि अच्छा हेयर मेकअप करके अभी तैयार है तो अभी मुझे एक्टिंग करनी है, मैं जैसा हूं या जैसा मेरा कैरेक्टर है अपन उसी तरह से करेंगे। क्यों हम कैमरा लगते ही ये दिखाने लगते हैं कि देखो अब हम एक्टिंग करेंगे, अब तैयार हो जाओ हमें देखने के लिए। मुझे इससे परहेज शुरू से था, मुझे नहीं पता कि अच्छी एक्टिंग क्या होती है, आज तक मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन हाँ मुझे बुरी एक्टिंग क्या होती है इस बात की समझ बहुत पहले हो गई थी,
0: और मुझे लगता है वो समझ होना बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं उनसे बचता था, और ये था कि क्या करना है ये तो एक्सप्लोर करो, ये बहुत महासागर है, ये पूरा खुला आकाश है, क्या करना है आप ढूंढो, लेकिन क्या नहीं करना है ये पहले उस
0: पहले
1: पर
0: पता होना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: पता होना चाहिए। तो विकास के साथ भी ऐसा ही किया मैंने,
0: जी
1: अपने गांव में जिस तरह से मैं देखता था कि लोग जिस तरह से खड़े होकर के, 5 लोग अगर पुलिया पे खड़े हैं या बैठे हैं और बात कर रहे हैं तो कितना, अगर बहुत इन्वॉल्व है उस तरह की बातें हो रही हैं तो उनका हाथ पांव कैसे रहता है, एनर्जी कैसी होती है, मेरी ये पूरी कोशिश रही। आप देखना किसी भी फ्रेम में आपको नहीं लगेगा कि ये लड़का अलग किसी दूसरे शहर का है या ये लड़का विकास इस गांव का नहीं है। तो इन सब पर मेरा बहुत ही मैं चाहता था कि घुस जाऊं, जैसे आप कोई शर्ट पहन लेते हो, कोई कोट पहन लेते हो और वो आपका हो जाता है, उसी तरह से विकास को मैंने पहन लिया।
0: बिल्कुल, और वो दिखता भी है। और इसके एक दो सीन है जिसकी मैं बात करना चाहूँ, जैसे एक था जिसमें विकास वो बाइक पे बैठता है और पूरा पूरा पलंग उठा के सर पर और चल
1: हाँ
0: देता है, तो
1: जी,
0: इस
1: हाँ जी।
0: तरह के जो सीन है ये कहीं इम्प्रोवाइज्ड है या स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे पहले से?
1: नहीं, ये जो बेसिकली जो खाट जो हम सर पे उठाते हैं
0: हाँ
1: ये तो
0: हाँ
1: स्क्रिप्ट में लिखा था,
0: अच्छा
1: लेकिन पंचायत में एक बड़ी अच्छी बात यह है, हमारे क्रिएटर्स जो हैं दीपक सर, अरुणाप सर और चंदन सर जो राइटर हैं, ये अपने एक्टर को बड़ा खुला छोड़ देते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात अभी मतलब शुरू से उन्होंने कहा है कि देख ये यूनिवर्स है, हमने अपने सारे कैरेक्टर को इस यूनिवर्स में उतार दिया है, मैं ये इंसिडेंट या ये इवेंट मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है बट ये होगा कैसे, आपको उस मोमेंट में, उस स्पेस में, उस एम्बियंस में जो समझ में आ रहा है आप करो। यही वजह है कि पंचायत में जितने कैरेक्टर हैं कई बार वो स्क्रिप्ट के बियॉन्ड चले जाते हैं और बहुत खूबसूरत चीज निकाल के ले आते हैं, है ना। और इसके लिए जरूरी है कि आप उस यूनिवर्स को समझें, अगर आप नहीं समझोगे ना तो ऐसा लगेगा एयर ड्रॉप किया हुआ ये कैरेक्टर है,
0: जी
1: सिर्फ स्क्रिप्ट बोल रहा है, सिर्फ वो लाइंस बोल रहा है, ऐसा लगेगा। तो ये छूट, ये लिबर्टी हमारे थिएटर्स ने

0: हम लोगों को दिया है। और मुझे भी इम्प्रोवाइज करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार जब आप जो हमारे राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ सोचा है इस सीन को कि ऐसा रखेंगे, उनके अतिरिक्त आप कुछ कर देते हो, उनसे आगे कुछ बढ़ा देते हो अपने सीन को या अपने कैरेक्टर को, तो यकीन मानिए जब आप होटल जाते हो वापस अपने फ्रेश होकर के, नहा के अपने बेड पे आते हो, तो बड़ी खुशी मिलती है आपको कि वाह मैंने सीन में
1: संतोष मिलता है,
0: यस
1: ये आज क्या किया,
0: आज बड़ा अच्छा सीन किया मैंने, और बहुत ही खुशी खुशी आपको नींद आ जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह 4:30-5 बजे का अलार्म बजता है, फिर आपको वही जुनून, वही पागलपन आपको काम आता है।
1: तो सेट पे कैसा माहौल है आपके को एक्टर से, ऑफ स्क्रीन भी कैसा माहौल है, किन के साथ मिलना जुलना तो लगा रहता होगा?
0: देखिए, एक तो बहुत ये है कि लोगों को लगता है कि बहुत हम लोग मिलते जुलते हैं, पर्दे पे इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन मुंबई बिल्कुल उल्टा है, किसी के पास भी समय नहीं है, और कई बार डर भी लगता है कि भाई कोई कहीं जाऊं पता नहीं क्या होगा, उसकी प्राइवेसी है, उसका क्या है। तो सेट पे तो हम लोग सब बहुत मिलजुल के, सब लोग, और ये सभी अभी इतने 8-9 साल का अनुभव है मेरा
1: जी।
0: सेट पे हम लोग जितनी केमिस्ट्री, और सिर्फ मैं किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, सभी प्रोजेक्ट में यही होता है कि
1: जी।
0: हम लोग सेट पे बहुत अच्छे रहते हैं, और जैसे ही हमारा पैकअप होता है, हम सब अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं, है ना। और ये कई बार सही भी होता है, कई बार मुझे गलत भी लगता है, बट ठीक है, मैं भी इस धारा में बह रहा हूँ, किसी के पास समय नहीं होता कि वो मिले, पुराने दिनों को याद करे।
1: सिर्फ कभी कभी किसी प्रोजेक्ट में अगर फिर से उनसे मुलाकात, फिर वो एक मिलना अलग हो जाता है।
0: एक तो हम लोग का जो भी एक्टर होते हैं
1: जी,
0: उनका बहुत रिसीविंग नेचर होता है
1: जी।
0: मान लो कि अगर आपकी एनर्जी मुझसे नहीं भी मिल रही है, आप बहुत अलग ख्यालात के हैं, मैं अलग हूँ, बट जब हमारा सीन होता है तो हमें अपनी एनर्जी को मैच करके और उस वक्त को बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को करना होता है
1: जी जी,
0: है ना
1: जी, बिल्कुल।
0: तो लोग लगा रहे हैं क्या है, बहुत बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है इन लोगों में। तो ये हमारा जॉब का एक सबसे पहला एक स्टेप है ये।
1: अच्छा, पंचायत के बाद क्या फर्क आया है जब आप अभी वापस गांव जाते हैं मिलने जुलने परिवार से, दोस्तों से, पहले के चंदन में और अभी वो जिस तरह से बिहेव करते हैं या मिलते जुलते हैं, कुछ फर्क है दोस्तों के बीच या बाहर के लोगों के बीच?
0: देखिए, उनके नजर, उनका नजरिया बदला होगा मेरे लिए, ये तो मुझे ऐसा लगता भी है, बट मैं तो बिल्कुल भी अंदर से नहीं बदला हूँ, मैं जैसा था वैसा ही हूँ। पहले भी इसी तरह से मैं सोचता था, इतना ही कूल और कॉन्फिडेंस में रहता था जितना आज है, और कभी मुझे अभी कई बार ऐसा लगता है कि ये तो होना ही था मेरे लाइफ में
1: जी।
0: तो कई बार आश्चर्य नहीं होता मुझे।
1: लेकिन बाहर जो बाकी लोग मिलते हैं, उनकी मेहमान नवाजी में कुछ फर्क आया?
0: बिल्कुल, कई बार तो उनको लगता है कि भाई ये चंदन तो आप, जैसे मुझे बहुत बुरा लगता है जब दोस्त लोग अजीब बिहेव करते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, उनको लगता है कि अरे इसको ऐसे मत बोलो, इसको ऐसे बैठाओ, इसके लिए थोड़ा पहले
1: कुछ
0: चंदन
1: बुरा लग जाएगा।
0: हाँ, तो मुझे लगता है ओ हेलो, मैं वही चंदन हूँ भाई, ऐसा क्यों तुम बिहेव कर रहे हो?
1: अच्छा,
0: जैसा पहले थे वो सही रहो। तो लोगों का नजरिया बदला है, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी, जैसा मैं पहले था आज भी वैसे ही हूँ, घर जाऊं या कहीं भी जाऊं, मैं वही कहा कि मेरा जॉब है अभिनय करना। लोगों को लगता है अरे ये तो पर्दे पे आ रहा है, ये सब चीजें, बट ये मेरा जॉब है। और बहुत ही संजीदा और गंभीरता के साथ, जितना एक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर अपने काम करते हैं, उसी शिद्दत के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ हम लोग भी काम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपसे बहुत बेहतर हैं या ऐसा कुछ, कुछ भी नहीं। हाँ, बट कई बार होता है कि कैमरा देख करके लोगों को थोड़ा सा रोमांच फील होता है, मैं समझ सकता हूँ कि वो अगर ऐसा सोचते हैं तो बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मेरा एक जॉब है, मैं बस एक जॉब कर रहा हूँ। मुझसे बेहतर काम जो सरहद पे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, वो या जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, उनका योगदान समाज में मुझसे कहीं ज़्यादा है।
1: क्या बात है, बिल्कुल। सुनवाते हैं आपके पसंद का एक गीत?
0: बिल्कुल सुनेंगे हम।
1: जरूर, बताएं।
0: हर घड़ी बदल रही है
1: रूप
0: जिंदगी की।
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं ये गीत।

0: मिला टैगोर जी भी स्क्रीन पर थी आपके साथ, उससे जुड़े कुछ खास अनुभव किससे आप सुनाना
1: यस
0: चाहें,
1: यस यस
0: कैसा लगा उनके साथ काम करके और कैसा अनुभव रहा?
1: बिल्कुल। गुलमोहर मेरे फिल्मी करियर के लिए एक ऐसा है फिल्म जिसको मैं हमेशा याद रखूंगा। हालांकि जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया था तो मैंने मना ही कर दिया था।
0: अच्छा, क्यों?
1: हाँ, क्योंकि कैरेक्टर मुझे सही नहीं लग रहा था कि यार मैं इस तरह का कैरेक्टर तो नहीं करूँगा। बट हमारे जो डायरेक्टर हैं राहुल चिटेला, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सुनो एक बार मुझसे मिलो, करना ना करना बात की बात है, पहले एक बार मिलो। मैं मिला और मुझे ये था कि अगर मैं जाऊंगा तो ये तो मना ही लेंगे, बट
0: जी
1: मैं बहुत जिद्दी रहूंगा अपने जिद पे कि भाई मुझे नहीं करना। और गया मैंड्रा में उनके ऑफिस और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करना चाह रहे हो। मैंने कहा सर मैं ये गेट कीपर इस तरह का कैरेक्टर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे एक डर भी था कि अगर मैं इस तरह करूंगा तो लोग मुझे इसी तरह के कैरेक्टर देते रहेंगे,
0: टाइप कास्ट कर
1: टाइप
0: देंगे।
1: कास्ट कर देंगे, और अपन बहुत अंदर भरा हुआ है मामला, तो फंसना नहीं है किसी एक कैरेक्टर में। उन्होंने कहा कि देख चंदन करना तो तुम्हें ही है ये कैरेक्टर, हाँ बोलो ना बोलो, अब तुम ये बताओ कि इस कैरेक्टर को और कैसे, तू क्या क्या नहीं चाहता है इसमें, और इसमें हम और क्या कर सकते हैं। एक नया लड़का उस फिल्म में, इतने दिग्गज लोग, मनोज वाजपेयी सर, शर्मिला टैगोर, तलत अजीज, अमोल पालेकर, वहां पे मेरे जैसा लड़का एक बोल रहा है कि सुनो मैं पूरे फिल्म में कभी कुछ जो कॉस्ट्यूम है ना वो वर्दी वाला गेटकीपर का वो नहीं पहनूंगा, पूरे फिल्म में कुछ काम नहीं करूंगा मैं, कुछ उठाना हुआ कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो करोगे क्या? मैंने कहा मैं पढ़ाई करूंगा, मैं एक ऐसा लड़का जो गांव देहात से आया है दिल्ली में और इस शहर में वो इंग्लिश पढ़ना चाह रहा है, तो कुछ ऐसा कैरेक्टर रखते हैं। राहुल कमाल का, बहुत कमाल के इंसान, वो मेरे हर बात को मानते चले गए। उन्होंने बोला बस मैं यही चाह रहा हूँ, यही करो, और पता नहीं क्यों मेरी सारी बातें उन्होंने मान ली और मैंने वो फिल्म किया। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं गुलमोहर में हूँ, क्योंकि पता नहीं इतने दिग्गज लोग के साथ फिर दोबारा कब काम करूंगा।
0: बिल्कुल।
1: और जैसे शर्मिला मैम, मुझे एक और घटना याद आ रही है कि एक तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था इस एक्शन, तो एक ऐसा
0: हाँ, एक
1: सीन
0: सीन
1: था
0: में।
1: वहाँ पर
0: जी
1: कुछ झड़प था, आपसी झड़प, उसमें मेरा को एक्टर उन्होंने मुझे पैर पे मार दिया था, तो मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया और मनोज सर को लगा कि मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ
0: अच्छा
1: जबकि मैं दर्द के मारे
0: जी
1: तड़प रहा था। तो एक पॉइंट के बाद जब मैं अपना लाइंस नहीं दिया उनको, तो वो आए और उनको लगा सच में ये कुछ तकलीफ में है, दर्द में है, और आकर उन्होंने फिर मुझे उठाया और तुरंत एम्बुलेंस ला के मुझे भेजा गया हॉस्पिटल। बट मुझे याद है कि शर्मिला मैम का जब रैपअप हो रहा था लास्ट डे उनका, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि अरे चंदन को बुलाओ, चंदन को बुला, और उन्होंने केक कट करके वो एक छोटे से प्लेट में रख करके मेरा वेट कर रही थी कि
0: अच्छा
1: मैं चंदन को खिलाऊंगी पहले, आई डोंट नो। और मुझे था कि भाई बड़े लोग हैं, अपना केक कट हो रहा है, मैं उधर कहीं स्पॉट बॉय लोग के साथ कहीं बैठ के अपना बैठा था, तो प्रोडक्शन भागा भागा है, अरे सर आपको उधर ढूंढा जा रहा है। मैंने कहा मुझे कौन ढूंढ रहा भाई, शर्मिला मैम। तो जब मैं वहां गया तो मैम ने वो प्लेट मुझे दी, अपने हाथों से खिलाया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब
0: जिन्हें
1: ये।
0: पर्दे पे बचपन से
1: हाँ
0: देखा
1: जी
0: और वो आज अपने हाथ से आपको केक खिला रहे हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: क्या बात है।
1: मैंने क्या, मेरे दादाजी ने भी उनकी फिल्में देखी होंगी, मेरे पिताजी ने भी देखी होगी,
0: जी जी
1: और
0: बिल्कुल।
1: मैं उनके साथ काम किया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
0: और मनोज वाजपेयी जी के साथ भी अपने स्क्रीन
1: हाँ
0: शेयर
1: जी
0: किया
1: हाँ जी हाँ
0: है,
1: जी
0: उनसे क्या कुछ, कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा
1: एक
0: किस्सा?
1: तो हाँ, मुझे एक एक एक सीन याद आ रहा है कि मैं और शांति, एक सीन चल रहा था, वो किचन में थी और फिर वो मेरे पास आती हैं, तो मनोज सर, जैसे सीन चल रहा था, मनोज सर वहीं पे चेयर लगा करके बाहर बैठ गए, उस दिन उनका सीन भी नहीं था। मुझे लगा यार क्यों बैठे हुए हैं ये, भाई मैं नया एक्टर हूँ, मैं मतलब इनसिक्योर हो जाऊंगा मैं, मतलब मुझे डर लग रहा था उनको देख के कि
0: जी
1: मैं जिनको, भाई जो इतने कमाल के एक्टर हैं उनके सामने मुझे एक्टिंग करने के लिए बोल रहा है, नहीं प्लीज आप चले जाओ, मेरे मन में ये चल रहा था।
0: अच्छा
1: और किसी तरह वो सीन बहुत अच्छा हो गया, और फिर जब सीन खत्म हुआ तो सर आए मेरे पास, उन्होंने कहा तू कहाँ से है? मैंने कहा सर मैं तो बिहार से हूँ। अरे बहुत सही, या थिएटर करते हो? मैंने कहा जी सर। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और उन्होंने से पीठ पे एक बार ऐसे थपथपा के वो चले गए। फिर तो हमारा पहला उनसे जो हम कह सकते हैं मुलाकात इस तरह से हुआ मनोज सर के साथ मेरा जी।
0: यहाँ पर आपकी पसंद का गीत कौन सा सुनवाना चाहेंगे आप?
1: इस वक्त मैं अपने पसंद का गाना सुनना चाहता हूँ।

0: समय में अगर मुझे मिले फिल्म करने के लिए तो मैं कैसे छोड़ सकता था। और ये FTI की फिल्म थी, बहुत प्यारी फिल्म इन लोगों ने बनाई। हालांकि मैं उस समय लगातार शूट चल रहा था, तो 15 दिन का एक गैप था। मैंने कहा इस बीच ये फिल्म हम शूट करेंगे, स्टूडेंट फिल्म है, मजे मजे में मैं चला गया था। क्योंकि एक आदत होती है ना कि आप OTT के लिए काम कर रहे हो या फिल्म कर रहे हो, और अचानक से एक स्टूडेंट फिल्म करने के लिए चले जाते हो, जहाँ पे बहुत सारी चीज, ना आपको होटल अच्छा मिलेगा, ना वैनिटी मिलेगी
1: एक
0: कोई।
1: अलग तरह का अनुभव।
0: हाँ जी, बट मैं FTI इसलिए चला गया था इस फिल्म को करने के लिए, उसके दो कारण थे। पहला कि थोड़ा सा मुझे ना एक ब्रेक चाहिए था, जो मेन स्ट्रीम में काम कर रहा हूँ उसे मुझे एक ब्रेक चाहिए था, मुझे लाइक कुछ मजे करके आ जाएंगे बच्चों के साथ। दूसरा कारण ये कि FTI में मैंने बहुत पहले राइटिंग के लिए अप्लाई किया था। मुझे ये था कि एक्टिंग के लिए तो मेरा होगा नहीं, तो क्यों ना अपन राइटिंग में चले जाएं। चूंकि मैं उस समय दैनिक जागरण में जॉब करता था कंटेंट राइटर, तो मैं सोचा कि यहाँ पर भी राइटिंग करके यहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर मैं पूरे दिन एक्टिंग वाले स्टूडेंट के साथ बैठा रहूंगा, उन्हीं के क्लास में बैठा रहूंगा, थोड़ी भगा देंगे क्लासरूम से, बैठूंगा वही एक्टिंग सीखता रहूंगा। बट उस समय मेरा वेटिंग एक रह गया राइटिंग में, और सच पूछी तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने कुछ पैसे कमाए थे मुंबई आने के लिए, तो उधर खर्च हो जाते हैं, तो बेहतर है कि। तो ये दो कारण थे। और बड़ी अच्छी फिल्म उन लोगों ने बहुत प्यार से बनाया, सब बच्चे ही थे, तो 6 या 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, बहुत शिद्दत से बहुत प्यार से हमने ये शूट किया, और बहुत इम्प्रोवाइज भी किया हम लोगों ने। बट ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था कि ये फिल्म स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो जाएगी और फाइनल राउंड से बाहर हो जाएगी। कहाँ, हम लोग गांव देहात में छोटे छोटे नाटक करते थे, ऑस्कर के लिए हमारी फिल्म नॉमिनेट हो जाएगी, ये किसने सोचा था।
1: बिल्कुल।
0: बट ठीक है, विधाता को जो मंजूर है, अपन उस पथ पे चल रहे हैं।
1: हाँ, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म गई है।
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ ही RJ बस्तर
0: हाँ
1: फिल्म,
0: जी,
1: उसके बारे में कुछ बताए, वो भी मेरे ख्याल से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गई है।
0: बिल्कुल।
1: एक तरफ ये पंचायत जो मासेस के लिए
0: हाँ
1: है,
0: जी,
1: और एक तरफ ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म, दोनों में काम करने का फर्क कितना है?
0: बहुत खूबसूरत सवाल है मैम ये। मैं इस तरह की फिल्म इसलिए करता हूँ ना, इससे मुझे सुकून और बहुत शांति मिलती है, बहुत प्यार मिलता है। RJ बस्तर, मैं बस्तर में गया शूट करने के लिए, एकदम बिहर जंगल में, चारों तरफ धान की खेती है, और बस्तर बहुत खूबसूरत जगह। जितना भी हम लोग बाहर सुनते हैं कि बस्तर में ये, बस्तर में पूरा बस्तर लाल रहता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई भय नहीं, बहुत ही सपोर्टिव लोग और बहुत प्यारे लोग। मैं पहली बार जीवन में आदिवासी भाइयों से मिला, इतना खातिरदारी करते हैं, ऐसा लगता है कि जान निकाल के रख देंगे आपके स्वागत के लिए।
1: अच्छा।
0: तो जब RJ बस्तर में शूट कर रहा था, तो एक तो कहानी बड़ी अच्छी, मनीष मानिकपुरी वहीं के रहने वाले हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर। वो आदिवासी लड़की की कहानी है जो रायपुर में काम करता है, दिहाड़ी मजदूर है, और उसको एक लड़की से प्यार है, और अपने प्यार के खातिर वो किस तरह से किस हद तक जाता है। और चूंकि आदिवासी में ना, वहाँ महिलाओं पुरुष में कोई ऐसा कुछ है नहीं, वो सब एक समान है, तो वहाँ की महिलाएं भी बहुत सशक्त होती हैं, सारे घर में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वही लेती हैं। तो इस फिल्म में भी यही है, जो हमारे अपोजिट हैं उनका ये है। अच्छा, उनको भी RJ बनना है,
1: अच्छा।
0: और मैं पीछे पीछे हूँ, उनका कंधा थामे हूँ, कि आपको जो बनना है बनो, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है। और अपने मोहब्बत के लिए उसका जो कैरेक्टर है रमेश, वो हद से गुजरने के लिए तैयार है। बड़ी बहुत प्यारी कहानी।
1: चलिए, यहाँ पर आपके पसंद का एक गीत हम सुनवा देंगे अपने श्रोताओं को।
0: हाँ जी, हाँ जी।

0: इतनी दिलचस्प बातें हो रही है आपके साथ।
1: हाँ जी,
0: और अब आते हैं हम चंपारण मटन करके
1: क्या बात है।
0: एक शॉर्ट फिल्म थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: FTI की फिल्म है ये।
0: हाँ,
1: रंजन इसके डायरेक्टर हैं और ये पहली ऐसी फिल्म है जो बज्जिका में बनी है। लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी, मैथिली है ना, लोगों को लगता है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भोजपुरी के अलावा भी कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। एक बड़ा खूबसूरत एक कहावत है बिहार में कि कोस कोस पे पानी बदले, तीन कोस पे बानी, है ना, मतलब
0: तीन कोस पे भाषा,
1: हाँ जी हाँ जी
0: बोली बदलती
1: हाँ जी। और बज्जिका मेरी मातृभाषा है,
0: है।
1: मेरी दादी, मेरे दादा, मेरे घर में आज भी जब अगर आपके सामने मेरा फोन आ जाए तो मैं अपनी माता जी से, पिताजी से बज्जिका में ही बात करूंगा। तो इस

0: अभी हाल फिलहाल आपकी फिल्म आई गांधारी और आखिरी राइड,
1: हाँ जी हाँ
0: ये
1: जी
0: कुछ अलग हटके रोल है जो अब तक आपने किया है।
1: हाँ जी
0: क्या अलग है, कैसा अनुभव रहा?
1: गांधारी तो मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि इसके डायरेक्टर देवाशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और मैंने इनको इनका काम जोरम में देख रखा है, और जैसा मैं चाहता था वैसी फिल्म बनी नहीं। और गांधारी करने का एकमात्र उद्देश्य ये भी है क्योंकि मैं थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहता था, है ना। तो मुझे लगा एक बेबी स्टेप है थोड़ा सा नेगेटिव वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए।
0: एक कदम है वो बस।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो इसीलिए मैंने वो फिल्म करी। बट ठीक है, हमारा काम सिर्फ अभिनय करना होता है, जैसे ही हमारा रैपअप होता है खत्म हो जाता है सब कुछ कट के बाद, है ना। बाकी ये फिल्म एडिट टेबल पे फिर से फाइनल बनती है, और बहुत सारे एक्सटर्नल एलिमेंट भी होते हैं जो फिल्म को प्रभावित करते हैं। मेरे हिसाब से गांधारी के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ, और आखिरी राइड वो भी बहुत मेरे दिल के करीब वाली फिल्म है, इसलिए क्योंकि कहानी बड़ी अच्छी है इसकी, और अनुराग कश्यप सर ने इनको इस फिल्म को प्रेजेंट किया है। और मुझे याद है कि ये फिल्म भी मैं कहीं और, मेरा शूट था पहाड़ पे किसी और दूसरी फिल्म को लेकर के, लेकिन डेट नहीं मैनेज हो रहा था, मतलब क्लैश हो रहा है डेट, तो मैंने उस फिल्म को छोड़ के आखिरी राइट करना पसंद किया जिसमें बिल्कुल भी बजट नहीं था, बट मेरे लिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं एक ऐसे स्टेज में हूँ जहाँ पे अपने पसंद का काम कर सकता हूँ, मेरे लिए अब कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छी कहानी इंपॉर्टेंट है।
0: अपनी पसंद रख सकते हैं अब आप
1: बिल्कुल
0: सामने।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और ऐसा कौन सा किरदार है जो आप के मन में है कि ये तो मुझे करना है, इस तरह का अगर कुछ किरदार है चाहते हैं? नेगेटिव शेड तो आपने कहा कि नेगेटिव, कोई ऐसा आइडल कि इस तरह का किरदार तो मुझे पर्दे पे उतारना है जब कभी मौका मिले?
1: बिल्कुल, ऐसे तो बतौर अभिनेता अभी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी तो बहुत नया हूँ, अभी तो बहुत सारे कैरेक्टर करने हैं, बहुत सारे चीज़ों को जानना है समझना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर ना एक बहुत गंभीर अभिनेता है।

0: जो आना बाकी है।
1: सीरियस रोल।
0: हाँ जी हाँ जी, क्योंकि कॉमेडी हो या बाकी चीजें हो वो सब तो ठीक है, बट जो मेरा कोर एक्टर है वो एक बहुत ही गंभीर है, बहुत संजीदा है। जैसे अगर आप समझना चाहें तो मैं एक उदाहरण दूं कि अगर आप हीट देख रहे हो, रॉबर्ट डिनर और अल पचिनो की फिल्म है जिसमें दोनों एक साथ बैठते हैं, इसमें चोर और पुलिस की कहानी है, और दोनों जब एक टेबल पे बैठते हैं
1: जी
0: और वो मेरे ख्याल से 10-11 मिनट का वो सीन है, मैं कई बार उस गंभीरता को महसूस करता हूँ कि मुझे भी कुछ इस तरह कैरेक्टर करना है अपने इस करियर में। इतनी ही स्क्रिप्ट को जज्ब करके, एक एक लाइन को महसूस करके, उस गंभीरता के साथ मैं अपने कैरेक्टर को करूं, मैं ऐसा चाहता हूं।
1: हम भी चाहते हैं कि आपके मनपसंद का किरदार, कैरेक्टर, रोल आपको मिले, संजीदा रोल भी मिले और हम उसमें भी आपको देखें।
0: बिल्कुल, और मैं आपको निराश नहीं करूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को हमेशा सरप्राइज करता रहूंगा।
1: बिल्कुल। जाते जाते हम एक सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक छोटे जगह से आए हैं और यहाँ पर आके आपने अपना मकाम बनाया है। तो जो उभरते कलाकार आते हैं, दो तरह के होते हैं, कई बार प्लान ए और प्लान बी लेकर चलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, अभिनय में ट्राई कर रहे हैं, ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम ये भी कर लेंगे, इसको भी ऑप्शन लेके चलते हैं। कई बार ऐसा होता है नहीं, पूरी शिद्दत से आते हैं लेकिन थक हार भी जाते हैं, वापस लौट भी जाते हैं। तो आपके ख्याल से आप क्या सलाह देना चाहते हैं उनको, यहाँ पर टिके रहना, अपना मकाम बनाना, क्या कहना चाहेंगे?
0: सबसे पहली बात कि दूसरों की बात आप ना सुने। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपके अंदर एक बड़ा कमाल का आर्टिस्ट है, आप मुंबई चले जाओ या इस फील्ड में जाओ, मत सुनो किसी की बात। आप अपने आप से पूछो, क्या वो एक्स फैक्टर है आपके पास, क्या वो हुक पॉइंट है आपके पास जिसकी वजह से आप मुंबई में रह सकते हो या इस फील्ड में पूरी जिंदगी अपने आप को दे सकते हो। ये बहुत जरूरी है, खुद से पूछना, दूसरे की बातों पे बिल्कुल भी आप मत जाइए। एक बात और कि कभी भी ग्लैमर और मुंबई में ये पैसा, शोहरत, नाम, ये सब देख कर मत आइए, ये आर्ट है। अगर अपने आप को इस आर्ट में समर्पित कर सकते हो तो आओ। बहुत सारे जो हमारे नौजवान दोस्त हैं वो गलती यही करते हैं, उनको चाहिए ग्लैमर, उनको चाहिए बड़ी बड़ी चीजें, बट वो आर्ट से कुछ लेना देना है ही नहीं, और वो अपने जीवन का बहुत ही गोल्डन टाइम बर्बाद कर देते हैं मुंबई में। एक ऐसा ये एज है, ऐसा समय जिस वक्त आपको आपके घर वालों के लिए देना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, बजाय आप यहाँ पे अपना समय एक तरह से बर्बाद ही करें, क्योंकि आपने देखा नहीं खुद को, जाना समझा नहीं,
1: जी
0: है ना। और मुझे एक बात और आप लोगों से कहनी है कि दोस्त, सफलता असफलता कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है खुश रहना। और मुझे ये लगता है कि देख, जिंदगी एक ही मिली है, जिंदगी है तो ये सारे गोल हैं, सारे एम हैं, आपके जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो प्लीज अपने आप को जानिए, समझिए, उस डायरेक्शन में काम कीजिए। अगर सच में आपके अंदर ये काबिलियत है कि कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज आप मुंबई या जहां कहीं भी हो इस फील्ड में आ जाइए, क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट की बड़ी भारी कमी है मुंबई में।
1: बिल्कुल।
0: आपका आना बहुत जरूरी है, इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, और इस समाज के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे आर्टिस्ट आए, चाहे वो किसी भी फील्ड के आर्टिस्ट हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, पेंटर हो, गीतकार हो, संगीतकार हो, जो भी हो।
1: जी
0: अगर आप कमाल के हैं तो इस इंडस्ट्री में आपकी बहुत जरूरत है।
1: ये बहुत ही सुंदर सलाह दी आपने। और चंदन जी, आपने अपने एक्टिंग का सफर तो हमारे साथ साझा किया ही, साथ ही निजी अनुभव और बड़ी ईमानदारी से वो छोटी छोटी बातें हमारे साथ शेयर की है, जो हमें बहुत अच्छी लगी है। और पूरी उम्मीद है कि जितने लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं उन्हें एक इंस्पिरेशन मिली है और उन्हें बहुत ही वो प्यारी प्यारी सलाह मिली है आपकी
0: जी
1: तरफ से। आपके जो भी भविष्य के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारी सी बातचीत के लिए।
0: शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा हूँ,
1: क्या कहना
0: और
1: चाहेंगे?
0: यहाँ बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे विविध भारती के ऑफिस में बुलाया है, और यहाँ आना किसी सपने से कम नहीं है मेरे लिए। ऐसा लगता है कि वर्षों का एक देखा हुआ, एक बालमन में देखा हुआ सपना आज मेरा पूरा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलके, विविध भारती के इन दीवारों को देख करके, इन माइक, ये लाइट, ये सब कुछ देख करके। आपको शायद यकीन न हो,

0: कि जब 2:30 बजे मेरा स्कूल छूटता था तो सीधे मैं घर आता था, अपना रेडियो सेट उठाता था, सखी सहेली सुनता था, उसके बाद पिटारा, और फिर रात्रि सेवा में मैं जब जयमाला से शुरू करता था तो गुलदस्ता होते हुए फिर गजल वाले प्रोग्राम, और फिर पता नहीं कब मेरी आंखें लग जाती थी और कभी मेरी मम्मी, कभी मेरे दादा, कभी मेरी बहन आकर के बंद करते थे रेडियो, या कई बार सुबह तक वो रेडियो चलता रहता था।
1: जी
0: मुझे याद है कि मैं रेडियो से इस कदर स्नेह रखता था बचपन में कि मेरे गली में, आंगन के बगल में गली था, अमरुद का पेड़ हुआ करता था, उसमें मैं कई बार उस अमरुद के पेड़ पे अपने ट्रांजिस्टर को लेकर के चढ़ जाता था, और ऊपर ही कहीं पेड़ के तने में बांध करके रेडियो चल रहा होता था और मैं अमरुद वही नमक लेके खाता रहता था,
1: क्या बात
0: है
1: है।
0: ना। तो रेडियो इस तरह से मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आज भी सूट पे जाता हूँ, या किचन में होता हूँ, या घर में, कहीं भी रेडियो मेरे घर के किसी न किसी एक कोने में बज रहा होता है। रेडियो मुझे लगता है मेरा बचपन का दोस्त है,
1: बिल्कुल
0: एक ऐसा दोस्त जो हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल है।
1: बिल्कुल, हमेशा साथ ही बनकर,
0: बिल्कुल,
1: क्या बात
0: रेडियो
1: है,
0: सिर्फ इस देश की धड़कन ही नहीं है, ये मेरा भी धड़कन है।
1: क्या बात है।
0: यस,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।

ये थी जाने माने अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोरोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।

0: सेबी कडून इन्व्हेस्टर जागरूकता उपक्रम. अधिक माहितीसाठी सेबी इन्व्हेस्टर वेबसाइट वर विजिट करा किंवा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करा.
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया.
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया.
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मेरे www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ.
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है.
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया. सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी.
3: इस त्योहार खुशियों को दीजिए गहनों की चमक. पूना गार्डगीर और सन्स की फेस्टिव ऑफर में गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पर 50% तक की छूट और रेवा डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट. तो इस त्योहार चमक

0: पसंद के साथ। पूना गाड़गिल और संस, परंपरा का विश्वास आपकी खुशियों के साथ। विजिट करें जेके टॉवर्स राजापेट अमरावती।
1: अपने घर को दीजिए मॉडर्न लुक अंबा मॉड्यूलर किचन के साथ।
0: भरपूर स्पेस, परफेक्ट फिनिशिंग और ढेरों डिजाइन गारंटी के साथ।
1: पता दस्तूर नगर MITC रोड अमरावती।
2: श्रोतेहो आपण ऐकत आहात आकाशवाणीचं अमरावती केंद्र FM 101.5 MHz प्रसार भारतीच्या वेव OTT प्लॅटफॉर्मवर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर। सायंकाळचे 5:54 झाली आहेत। आता विविध भारती प्रसारण सेवेचे कार्यक्रम आम्ही मुंबई केंद्राहून पुन्हा सहक्षेपित करीत आहोत, कृपया प्रतीक्षा करा।

मैंने सब कागज पे लिख दिया था बहुत पहले, दिल का हर राज कह दिया था बहुत पहले। अब जो पूछोगे तो क्या बाकी है कहने को, जो कहना था कह दिया था बहुत पहले। मेरे जख्मों की गहराई ना पूछो मुझसे, मैंने हर दर्द को अपना लिया था बहुत पहले। तुमको फुर्सत ही ना थी हाले दिल सुनने की, हमने सब कुछ तो कह दिया था बहुत पहले। जिसको तुम आज भी एक ख्वाब समझते हो, वो हकीकत थी, हमने देख लिया था बहुत पहले। हमने हर रंज को किस्मत का लिखा मान लिया था, तुमको खोने का भी डर था बहुत पहले। तुमने लौट आने का वादा तो किया था हमसे, दिल ने मगर अंजाम समझ लिया था बहुत पहले।

0: कि ना जाने तुम कब आओगे।
1: हम टूटे ये दिल भी टूटा, चलो जाने दो, क्या सुनोगे क्या कुरे दोगे, जाने दो। दर्द की बात अगर छेड़ी तो बिखर जाएंगे, जख्म सोए हैं उन्हें मत छेड़ो, जाने दो। हमने माना कि बहुत रंज दिया है तुमने, अब न शिकवे न गिले, बस छोड़ो, जाने दो। दिल ने बरसों जिसे आंखों में सजाया था, वो ख्वाब था, अब ख्वाब समझो, जाने दो। जिंदगी फिर भी गुजर जाएगी खामोशी से, हम अगर टूट गए हैं तो गए हैं, जाने दो। जिसको अपना कहा वो अपना था ही कब, अब ये किस्सा भी हुआ पुराना, चलो

आके तुझ बिन इस तरह ऐ दोस्त घबराता हूँ मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ मैं। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। ऐन से फकत इश्क नहीं अजाब भी होता है, दिल के जख्मों का कोई हिसाब भी होता है। दिल के बहलाने को काफी नहीं वादों की रोशनी, चश्मे तर में आलम इस्तेराब भी होता है। हर ताल्लुक को समझ लेना मोहब्बत तो नहीं, कुछ ताल्लुक में फरेब बेहिसाब भी होता है। इश्क में हर शख्स को मिलती नहीं मंजिल, राहे उल्फत में दश्ते सराब भी होता है। इश्क इंसान को फकत आबाद ही नहीं करता, इसमें आदमी का खाना खराब भी होता है।

0: मैंने आज फिर बैठ के तन्हाई में उजड़े दिल उदास आंखों का हिसाब लिखा। हर ख्वाब का जिक्र जो तेरे साथ देखा था, हर उस जख्म पे खामोशी का अजाब लिखा। जो लफ्ज लबों तक आके इजहार ना बन सके, उन्हें अशकों की जुबा में बेनकाब लिखा। तेरे बाद जो गुजरी दिले बेकरार पे, हर एक दिन को दर्द की किताब लिखा। ना कोई गिला ना शिकायत का बाब लिखा, मगर जो दिल ने कहा वो बेहिजाब लिखा। अब क्या उम्मीद वफा, क्या इंतजार वसल, हर एक आरजू को वक्त ने नायाब लिखा।
1: मोहब्बत जिंदा रहती है।

वो मेरा मुंतजिर होगा, ये मेरा ख्याल है बस, दिल को उस पे अभी तक एतबार है बस, जो उसने पूछ लिया हाल दिल तो क्या कहें, ये एक लम्हा ही सदियों का इंतजार है बस, ना उसने वादा किया ना वफा का इकरार, मगर ये दिल भी अजब बेइख्तियार है बस, क्या सुनाएं उस दौरे मुख्तसर की कहानी, कि हमें रास ना आई इस मोहब्बत की।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूँ मंजू द्विवेदी। पहला जो गीत है ये धुंध फिल्म का गाना महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: ये है रिफ्यूजी फिल्म का गाना, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार अनु मलिक।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: सोनू निगम की आवाज में समीर का लिखा हुआ ये गाना अनु मलिक का संगीत, फिल्म सोल्जर।

तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें, समीर का लिखा हुआ गाना, नदीम श्रवण का संगीत, फिल्म का नाम है राजा।

0: वो बताएंगे फिल्म के शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोरोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनके जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। श्रीमान सत्यवादी, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे मुकेश की आवाज में। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई दत्ताराम ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रांची में एक छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी और संस्थान में दिशा निर्देशों के पालन का आकलन करेगी। आयुष मंत्रालय ने त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार और प्रबंधन के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के साथ योग को शामिल करते हुए मानक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य आयुष की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में उपचार की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देना है। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट

वक्त की दीवार, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की है। गीतकार अनजान, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए स्वामी फिल्म का गाना। आवाज येसुदास की है, अमित खन्ना के बोल हैं और संगीत राजेश रोशन का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं भाग 13। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार शेखर सेन। 7:00 कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस ये कार्यक्रम होगा। 8:00 हवा महल में सुनिए नाटिका रिश्ते प्यार के। इसके लेखक हैं विष्णु भाटिया और निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार ये केंद्रित होगा अभिनेता अशोक कुमार पर। 10:00 का समय छाया गीत कार्यक्रम का। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11:00 कार्यक्रम होगा रंग तरंग। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। और अब आपको बताते हैं कल यानी बुधवार 14 अक्टूबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 6:05 पर कार्यक्रम होगा वंदनवार और 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 341। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला राग समय चक्र भाग 1। कलाकार हैं गायिका मंजरी आलेगांवकर। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। सुबह 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम हेरा ही प्यार के और 8:15 पर कार्यक्रम होगा त्रिवेणी। आठ बजकर 30 पर चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण होगा और सुबह 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार सुनिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पर ये केंद्रित कार्यक्रम होगा। सुबह 10:00 कार्यक्रम पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे। 11:00 रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल और 1:00 कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। दिन में 2:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी और 2:30 पर सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम होगा। दिन में 3:00 का समय सखी सहेली कार्यक्रम का है और शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान सुनिए फिल्म लेखक निर्देशक डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। शाम 5:00 कार्यक्रम होगा छाया गीत।

शाम 5:30 पर तराने नए पुराने ये कार्यक्रम होगा और 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम, शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण, शाम 7 जयमाला कार्यक्रम, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे और रात 8 का समय हवा महल कार्यक्रम का है। सुनिए प्रहसन शीर्षक की खोज, इसके लेखक हैं देवराज दिनेश और निर्देशक हैं मुख्तार अहमद। रात 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम होगा, 9 कार्यक्रम होगा आपके लिए और रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार जो केंद्रित होगा कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पर। रात 10 का समय है छाया गीत कार्यक्रम का, 10:30 पर ढलती जाए रात ये कार्यक्रम और रात 11 रंग तरंग कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन। इस कार्यक्रम में सुनिए अवतार फिल्म का गाना आशा भोसले, महेंद्र कपूर और नरेंद्र चंचल की आवाजों में। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अवतार फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले, महेंद्र कपूर और नरेंद्र चंचल की आवाजों में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का संध्या रंजन ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आज सुनते हैं श्रृंखला की 13वीं और अंतिम कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज की इस कड़ी में हम चाहते हैं शेखर दादा आप अपनी रचना संसार के कुछ मोती हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। अपनी कुछ रचना का जिक्र कीजिए और कोई रचना आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
2: मेरा ये बड़ा सौभाग्य रहा है कि मुझे HMV ने साइन तो किया था गजल गाने के लिए, पर मेरी एक भी गजल रिकॉर्ड नहीं हुई और मेरे करीब 280 एल्बम्स भजन और इस तरह के रामायण और भगवत गीता इस तरह के 280 एल्बम्स हो चुके हैं। और अमूमन अधिकांश गायक गायिकाओं ने मेरे लिए भजन गाए हैं, पर सबसे अधिक जो काम हुआ है वो मेरा अनुराधा पुडवाल जी के साथ 100 से भी अधिक CDs उनके साथ मैंने किए हैं। नितिन मुकेश जी के साथ 5 CDs का काम किया है। उदित नारायण जी, सोनू निगम जी, अलका याग्निक जी, ऐसे बहुत सारे गायक गायिकाओं के साथ मैंने किया है। और मैं दरअसल ये चाहता था कि जो मेरे मन का हो और जो मैं अपनी मर्जी से कर सकूं वही काम मैं करूं
1: जी।
2: तो उसमें मुझे लगा कि अगर मैं प्राइवेट एल्बम करूंगा वहीं पर वो संभावना बन सकती है कि मैं अपने मन की रचनाएं रिकॉर्ड करूं, कंपोज करूं। क्योंकि जब आप फिल्मों के लिए काम करते हैं तो आपको दूसरे के ऑर्डर पे काम करना पड़ता है
1: जी, जी।
2: भी कहानी ये है, डायरेक्टर को पसंद नहीं आया, प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आया, ये सब। तो फिल्म का भूत तो मेरा पहले एक साल में ही उतर गया। मैंने कहा ये मेरे मतलब की लाइन नहीं है, बहुत अच्छी लाइन है, पर मुझे लगा कि मैं प्राइवेट एल्बम्स का काम करूं। तो वो मेरे जीवन का एक बड़ा अद्भुत अनुभव रहा। और मैं आपको आज सुनाना चाह रहा हूँ मीराबाई का एक भजन
1: जी।
2: जो मीरा नाम के एल्बम से हमने रिलीज भी किया था और वो गाया था अनुराधा पुडवाल जी ने
1: जी।
2: और उसमें जो स्वर रचना थी वो कलावती और जनसन मोहिनी के आसपास मैंने रखी थी। दरअसल ये एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब आप रचना बनाते हैं ना तब राग ध्यान में नहीं रहता, क्योंकि राग जो होता है स्वर प्रधान होता है। भजन या गजल या गीत वो शब्द प्रधान होता है, तो जहाँ शब्द प्रधान होगा वहां पर स्वर थोड़े पीछे आ जाते हैं। ये अनुराधा जी की आवाज में भी आप सुनाइएगा, पर मैं पहले गाता हूँ क्योंकि मेरी बहुत प्रिय रचना है
1: जी। जी जरूर सुनाएं।

0: इस रचना के बाद शेखर दादा बताइए हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या सुनवा रहे हैं।
1: हमारे यहाँ माँ के भजन जो है वो थोड़े जयकारा
0: कीर्तन के
1: शेरा वाली दा और उस तरह के कि माँ तू आजा तेरे लिए हलवा बनाया है या माँ ने टेलीफोन किया है, इस तरह के गाने होते हैं। पर इसके बिल्कुल विपरीत बंगाल में जो श्यामा संगीत की परंपरा है उसमें माँ के लिए आप वैसे ही गाने गाते हैं जैसे आप अपनी माँ को गाकर सुना रहे हैं।
0: क्या बात है।
1: और ये भी एक बड़ी विलक्षण बात है कि केवल केवल और केवल भारतीय संस्कृति में ही देवी का रूप पूजा जाता है और माना जाता है। इसके अलावा पूरे संसार की किसी भी संस्कृति या किसी भी धर्म या किसी भी सभ्यता में माँ को वो स्थान नहीं मिला है जो हमारे यहाँ है। तो एक बार मुझे कहा गया कि भाई आप बनाइए। मैंने कहा भाई देखिए आपके यहाँ जिस तरह के भजन बनते हैं इस समय उस तरह के भजन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर अगर आप कहें कि जैसे बंगला में बनते हैं उस ऐसा कुछ बनाइए तो मैंने कहा उसका मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो उस समय सारे जो भजन बने वो बहुत ही अद्भुत बने माँ के लिए
0: जी।
1: तो मैं आपको उसमें से एक सुनाता हूँ। और ये मुझे केवल एक दिन में मैंने 10 भजन लिखे स्वरबद्ध किए और अगले दिन उसको रिकॉर्ड कर दिया।
0: क्या बात है।
1: और ये शक्ति नाम से या माँ काली के भजन के नाम से रिलीज हुआ। इसमें मेरा भाव था कि मैं माँ की अगर अर्चना करता हूँ मैं माँ के आंखों में कितना स्थान रखता हूँ, बहुत थोड़ी सी जगह मेरी होगी। सभी तो माँ के भक्त हैं, सभी माँ के संतानें हैं। तो मैंने उसमें लिखा कि जैसे नैनों में ज्योति, आंखों में जो ज्योति होती बहुत छोटे से हिस्से में होती है, सीप में मोती, बहुत बड़ा सीप होता है मोती छोटे से स्थान पर, वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती है, ज्यादा नहीं चाहिए। मुझे मालूम है कि और भी संतानें हैं उनको भी आप स्थान दीजिए पर थोड़ी सी जगह मुझे दीजिए। ये भाव है उसमें
0: जी। सुनाए।

0: वाह, बहुत अद्भुत। शताब्दी की भक्ति रचनाएं, इसके आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और आज की ये अंतिम कड़ी है। शेखर दादा, हम आपसे एक वादा चाहते हैं कि आप वादा कीजिए कि अगली बार जब आएंगे विविध भारती के स्टूडियो में तो अपनी रचनाओं के बारे में बातें करेंगे, अपने रचना संसार को आप यहाँ पर समाहित करेंगे।
1: सबसे पहले तो मेरा बहुत सौभाग्य कि विविध भारती के संगीत सरिता कार्यक्रम के लिए, जो मैं और मेरी पत्नी नित्य सुनते हैं, तो हमारे लिए बड़ा ही हमारा प्रिय कार्यक्रम है। और सुबह उठ करके मेरी पत्नी विविध भारती हर दिन लगा देती हैं।
0: क्या बात है।
1: और सबसे अच्छी बात यह है कि हर बार कुछ न कुछ मिलता है
0: जी जी,
1: जो दूसरे किसी कार्यक्रम में नहीं हो पाता, वो संगीत सरिता में मुझे हमेशा लगता है कि हमें कुछ मिल रहा है। तो अपने श्रोताओं को भी मैं कहूँगा कि आप और अधिक गंभीरता से संगीत सरिता सुनिए, क्योंकि इतने सारे लोगों को लेकर विविध भारती आता है और ये बहुत बड़ा योगदान है। हम अपने संस्कृति को जाने, अपनी सभ्यता को जाने, अपने महान कलाकारों को जाने, तो ये एक बहुत बड़ा हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है। तो आप सभी श्रोताओं को हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ और विविध भारती ने ये अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत आभार। विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और तबले पर साथ दिया आशीष बिस्वास जी ने, आपने बहुत ही कुशलता से संगत की और हम सबको बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहाँ पर आए। और हारमोनियम पर संगत स्वयं शेखर सेन दादा ने किया। और अब हम सभी श्रोताओं से ले रहे हैं अनुमति। आप सभी को नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज हमने सुनी इस श्रृंखला की 13वीं और अंतिम कड़ी। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन, तबला संगत आशीष बिस्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। संगीत सरिता की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/bbsmumbai। इस पते पर जाकर अपने कमेंट से हमें अपने विचार साझा कीजिएगा। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: शेतकरी बांधवांनो, आताच आपण कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी ऐकलात। या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते रोशन जाधव। ही आकाशवाणी मुंबई केंद्राची निर्मिती होती।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सबसे पहले लव यात्री इस फिल्म का गाना देव नेगी और योयो हनी सिंह की आवाजों में, शब्बीर अहमद, योयो हनी सिंह और होमी डिल्लीवाला का लिखा हुआ गाना, तनिष्क बागची का संगीत।

लीजिए अब सुनिए वेल डन अब्बा, इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और रूप कुमार की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत शांतनु मोइत्रा का। आवाज श्रेया घोषाल और रूपांकर की है।

चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए वी आर फैमिली। इस फिल्म का गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में इरशाद कामिल और अन्विता दत्त के बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

ब्रेक का समय पूरा हुआ और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं उड़ान फिल्म का गाना अमित त्रिवेदी और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिनपॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। तो बात पक्की, ये फिल्म का नाम है। प्रीतम राणा और सोहम की आवाजें हैं, सईद कादरी के बोल हैं और प्रीतम का संगीत है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल है। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने,
2: फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर ना दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल है। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एन मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
3: आई वॉन्ट स्ट्रेंथन माई पार्टी टू तमिलनाडु।
4: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहाँ पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
3: तो स्ट्रेंथन द पार्टी।
2: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
1: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक

0: चित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
2: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
3: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
1: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
4: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भू स्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
5: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28% की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18% कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
6: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
5: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
7: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं

0: आ जाएगा।
1: बिलो 5 करोड़ नो प्रोसिक्यूशन।
2: पिछले 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देश हित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
3: UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
0: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPA ने बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी UPI लेन देन निःशुल्क रहेंगे। MDR शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेन देन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत UPI QR कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई MDR शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ।
3: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीतबद्ध किया। ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम मस्ताना।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जीवन मृत्यु इस फिल्म का गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, जवां मोहब्बत। ये फिल्म का नाम, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: संगीत के साथ ही कार्यक्रम आपके लिए संपन्न होता है।
1: आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं विविध भारती से आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था

0: याद है आपको? आजा अब तो आजा, आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर सन 1911 में भागलपुर के एक वकील कुंजीलाल गांगुली के घर हुआ। बचपन का उनका नाम था कुमुदलाल गांगुली। गौरी देवी और कुंजीलाल के 4 बच्चे थे, इनमें सबसे बड़े थे कुमुदलाल, जी हाँ अशोक कुमार यानी दादा मुनि। उनसे 2 साल छोटी थी उनकी बहन सती देवी। अशोक कुमार से 14 साल छोटे थे कल्याण गांगुली, बाद में जिनका स्क्रीन नेम यानी रुपहले पर्दे का नाम था अनूप कुमार। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे आभास कुमार, जो बाद में किशोर कुमार नाम से विख्यात हुए। बाजू।

अशोक कुमार की छोटी बहन सती देवी का विवाह जाने माने निर्माता निर्देशक शशधर मुखर्जी से हुआ था। शशधर मुखर्जी ने बाद में ज्ञान मुखर्जी, राय बहादुर चुन्नीलाल और अशोक कुमार के साथ मिलकर फिल्मिस्तान स्टूडियो का निर्माण किया। अशोक कुमार भागलपुर में जन्मे थे। बाद की पढ़ाई उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में की। हालांकि अपने पिता ही की तरह अशोक कुमार भी लॉ के छात्र थे, पर उनके मन में सिने जगत में जाकर तकनीशियन बनने की तमन्ना थी। ऐसे में काम आए उनके बहनोई जो हिमांशु रॉय की फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज में कार्यरत थे। उन्होंने अशोक कुमार को बतौर तकनीशियन बॉम्बे टॉकीज में रखवा लिया। ये सन 1930 के आसपास की बात है। बॉम्बे टॉकीज उस जमाने का बहुत ही बड़ा और जाना माना नाम था। अशोक कुमार लैब असिस्टेंट के

0: काम में खुश थे और रम गए थे। ऐसे में जीवन नैया फिल्म का निर्माण चल रहा था। ये सन 1936 के आसपास की बात है। निर्माण के दौरान फिल्म के हीरो नजमुल हसन बड़े ही नाटकीय ढंग से फिल्म अधूरी छोड़ फिल्म की नायिका के साथ भाग खड़े हुए थे। किसी तरह से ये फिल्म फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। देविका रानी के साथ नायक के रूप में पेश किए गए बॉम्बे टॉकीज के लैब असिस्टेंट कुमुदलाल गांगुली, इसी फिल्म के दरमियान इनका नाम अशोक कुमार हुआ। वो ना नकर करते रहे पर अनिच्छा से ही सही वो बन गए इस फिल्म के हीरो। फिल्म जीवन नैया के साथ ही अशोक कुमार की एक्टिंग की गाड़ी भी शुरू हो गई।
1: रेल गाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा।

0: गाय छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान फुल पग डंडी टीले पे झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हार गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल पट्टम दमली पट्टम दमली पट्टम मतलब पट्टम ओंगोल नदी गोल नदी गोल ओंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद सोतनूर कोतनूर सोतनूर बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक
1: जीवन नैया के बाद इसी साल यानी 1936 में एक और फिल्म देवी का रानी और अशोक कुमार को लेकर बनी अछूत कन्या। सामाजिक विषय पर बनी ये फिल्म भी काफी चली और देवी का रानी तथा अशोक कुमार एक हिट जोड़ी के रूप में विख्यात हो गए थे।

बाद में देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत कई फिल्में आईं। 1936 में ही जन्मभूमि, 1937 में इज्जत और सावित्री, 1938 में वचन और मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित फिल्म निर्मला। देविका रानी और अशोक कुमार अभिनीत आखिरी फिल्म थी अनजान, जो बनी थी 1941 में। ये फिल्म कुछ खास नहीं चली थी, परिणाम स्वरूप इसके बाद इन दोनों की एक साथ कोई फिल्म नहीं आई। इससे अशोक कुमार एक तरह से लाभान्वित ही हुए, उन्हें अब अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल गया था। अब तक वो देविका रानी के प्रभा मंडल के कारण कुछ छिपे हुए से लगते थे। उस जमाने की बड़ी ही खूबसूरत अदाकारा थी लीला चिटनिस, जो एक जानी मानी मॉडल भी थी। बाद वाली पीढ़ी ने लीला चिटनिस को रोती हुई मजबूर माँ के रूप में ही देखा हुआ है। उन्हें जानकर जरूर आश्चर्य हो सकता है कि लीला चिटनिस कभी खूबसूरत मॉडल भी रह चुकी हैं। खैर, तो लीला चिटनिस के साथ अशोक कुमार की जोड़ी बन गई। हालांकि लीला चिटनिस भी उम्र और रुतबे में अशोक कुमार से बड़ी थी, पर इनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय हुई थी।

अशोक कुमार अभिनीत एक के बाद एक कुछ फिल्में आईं, उनमें उल्लेखनीय हैं 1939 में आई फिल्म कंगन, 1940 में बंधन और आजाद। इन फिल्मों की सफलता ने अशोक कुमार को एक अच्छे मकाम तक पहुंचा दिया। 1941 में लीला चिटनिस के साथ आई फिल्म झूला की सफलता ने अशोक कुमार को फिल्म की सफलता की गारंटी के रूप में देखा जाने लगा।

1943 से 1950 का दौर अशोक कुमार के उरूज का दौर कहा जा सकता है। 1943 में ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत ने सफलता का नया इतिहास रच डाला। इस फिल्म में अशोक कुमार ने विलेनिश रोल किया था। यह हिंदुस्तानी फिल्मों में पहली बार हो रहा था। फिल्म की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने 1 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब 1.5 लाख में अच्छी खासी फिल्म बन जाया करती थी।

0: रहा है शोर उन।
1: सही अर्थों में अशोक कुमार इस दौर के सुपरस्टार बन गए थे। इस दौर की उनकी चर्चित फिल्में थीं 1944 में चल चल रे नौजवान, 1946 में शिकारी, 1947 में साजन, 1949 में महल, 1950 में संग्राम और समाधि।

इस फिल्म कंपनी के बंद होने के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण भी किया है। 1947 में आई फिल्म नीलकमल राज कपूर साहब की बतौर नायक पहली फिल्म थी। 1948 में आई फिल्म जिद्दी जो देवानंद साहब और प्राण के करियर की एक मील का पत्थर फिल्म थी। 1949 में आई गूढ़ फिल्म महल जिसमें उन्होंने नायक की भूमिका की थी। उनकी नायिका का रोल वीनस ऑफ द इंडियन स्क्रीन मधुबाला ने निभाया था।

अशोक कुमार ने नलिनी जयवंत और मीना कुमारी के साथ बाद की कुछ एक फिल्मों में काम किया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये गाना।

दोस्तों, फेल्ट हैट लगाए काले चश्मे के साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में विलेन के रोल भी किए हैं और कुछ एक फिल्मों में फर्ज पाबंद पुलिस अफसर की भूमिकाएं भी की हैं। कुछ ऐसा ही रोल था उनका ज्वेल थीप में।

1960 के बाद अशोक कुमार ने चोला बदलते हुए कैरेक्टर एक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। ये 1960 के आसपास की बात है। वो फिल्म कानून में जज बने हैं। 1963 की फिल्म बंदनी में उमर दराज स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका में वो नजर आए थे। 1964 में आई फिल्म चित्रलेखा में ढलती उम्र के धर्मगुरु के रूप में भी वो दिखाई दिए थे। 1970 में आई फिल्म जवाब में वो बने थे एक जमींदार। उनकी कुछ लैंडमार्क फिल्में हैं आशीर्वाद, सत्यकाम, पूरब और पश्चिम, पाकीजा, मिली, छोटी सी बात, खूबसूरत वगैरह।

0: रंग सब सखा संग मन में उमंग गगित मंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी।
1: 1980 से 1990 के दशक में वो कुछ टीवी शोज में भी काम कर चुके हैं। पहला भारतीय सोप ऑपरा हम लोग में वो एक एंकर के रूप में थे। बहादुर शाह जफर में भी वो नजर आए थे। उनका हिंदी फिल्म के स्क्रीन पर आखिरी अपीयरेंस 1997 में आई फिल्म आंखों में तुम हो, इस फिल्म में था। अशोक कुमार ने न केवल अनुप कुमार, किशोर कुमार इन भाइयों का करियर बनाया, बल्कि बीआर चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सावंत जैसे निर्देशकों के लिए रास्ता बनाया, उन्हें मौके प्रदान किए। दोस्तों, अशोक कुमार को कई एजाज अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें उल्लेखनीय है 1999 में भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उनकी सराहना के तौर पर उन्हें दिया था पद्म भूषण का सम्मान। और उल्लेखनीय है 1988 में उन्हें मिला फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड। दोस्तों, सबके चहेते दादा मोनी अशोक कुमार अदाकार फिल्मकार के अलावा एक चित्रकार भी थे। होम्योपैथी के वो अच्छे जानकार भी थे। अशोक कुमार ने कई आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वो पहले स्टार थे जो हीरो रहे, अधेड़ उम्र के नायक रहे, उम्र दराज ऋषियों जैसे रोल भी उन्होंने निभाए हैं। ये महान अदाकार 10 दिसंबर 2001 में मुंबई में अपने आदर्श

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने अदाकार फिल्मकार अशोक कुमार पर। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग प्रदान किया आकांक्षा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब अशोक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आवृत्ति पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
1: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: हाय हाय।
0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
3: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है।
2: ना, बोलो बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: वादा।
1: हाँ जी वादा।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

किसी की आवाज, जानी पहचानी सी आवाज। हम पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कोई नहीं है आसपास। फिर भी एक एहसास है, जैसे है वो कहीं आसपास। इसी एहसास ने गुनगुनाया प्यार का मीठा सा राग, इसी एहसास ने लिखी थी नेह की पाती किसी के नाम।

दुनिया की नजरों से पहाड़ों की ऊंचाई पर चांद तारों की दुनिया में चलो, कहीं दूर चले चले वहां जहां कोई जख्म ना हो, जहां मुस्कुराने पर पहरे ना हो, जहां मोहब्बत के दुश्मन ना हो, जहां पलके झपकाएं तो फूलों की क्यारियां लहलहा उठे, जहां तुम्हारे बोलने से कोयल कूक उठे। दुनिया की तलखी से चलो कहीं दूर चलें।

जरा सी खुशी, जरा सी हंसी, जरा सी उदासी, इसी से मिलकर बनती है जिंदगी। ख्वाबों के तिनके जोड़कर बन जाता है जिंदगी का आशियाना। चलो बनाएं ख्वाबों का जहां, आधी आधी खुशी बांट ले, बांट ले गम, बांट ले आधी आधी जिम्मेदारियां, बांट ले आपस में ख्वाहिशों के मोती, कामयाबी के फूल।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। तुम्हें ने भरी जिंदगी में रोशनी, तुम्हें ने सींचा प्रेम के जल से मन की क्यारी को। यही वो मौसम था जब गुलाबी मन पर तुमने पीला रंग छिड़क दिया था, और फिर सरसों के पीले फूल इतराते हुए मुस्कुरा उठे थे। बाग में बैठा मैना का जोड़ा अपनी बोली में कुछ बोला था, और दो चेहरों के गाल गुलाबी हो गए।

खिड़की से दूर क्षितिज को देखते हुए जब आज फिर खोली मन की डायरी तो जगमगा उठी वो तस्वीरें जब मन से बांधे थे किसी के मन के तार, जब चलते हुए ट्रेन पर दौड़कर चढ़ने की कोशिश की थी, एक दूसरे का हाथ थामा था, दिखाई थी तमाम तस्वीरें एक दूसरे को, जब यूं ही सड़कों पर खाली बेमकसद चलते रहते थे, याद आ गए वे पल जब यूं ही बैठे चुपचाप एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे थे।

दिलों की प्रीत जमाने के लिए कहानी बन गई। बहती हुई नदी का किनारा, लहरों का खेल करता समंदर, आसमान की बुलंदियों को छूते पहाड़, दो चाहने वाले के हमदम बन गए। उनके बोलने से कायनात खनक उठी, उनकी हंसी बहता हुआ झरना बन गई। उनसे गुफ्तगू जैसे फूलों का खिलना हो, उन्हें देखना जैसे चांद को निहारना हो।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों

सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में तीन नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि दो नगर पालिकाओं और एक नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती हैं। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को एसआईआर से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैरागुए में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश की बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।